أشد من الله.

ये तुम्हारा

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream, a product by
4: ख़बर आए इस्लामाबाद नाकाम थियो आए त इस्लामाबाद के थर वारन हवाले कयो थर जे तरक्की ते समूरो मुल्क हैरान आए इस्लाम कोट में थर कोल फेज 3 मंसूबे जो इफ्तिताह कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आए त कराची में सियासी यतीमन जी जमायत जी सियासत करे रही आए सियासत के सिंध में आण वारी कोशिश के कामयाब थियण न ॾींदासीं थर जे ॿारन टॉप कनि था तव्हां खे वाधायूं ॾियण बदिरां नफ़रत वारी सियासत कयो था थर जी तरक़ी कुझु माण्हुनि खे हज़म न आहे थी रही असां नफ़रत जी सियासत खे दफ़न करे छॾींदासीं इस्लामाबाद जा मायर चवंदा हुआ त थर जो कोयलो बेकार आहे सीड़पकारी कण बेकार आहे हाणे पूरो पाकिस्तान हैरान आहे त थर किथे पहुची वियो आहे इस्लामाबाद वारनि खे चवां थो त हू बि थर जहिड़ी तरक़ीअ ते ध्यानु ॾियनि हुकूमत ऐं अपोज़िशन विच में थियल ॻाल्हियुनि जे नाकामीअ जो ज़िमेवार केरु हुकूमत ऐं अपोज़िशन जा हिक ॿिए ते इल्ज़ाम जारी वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक फज़ल चौधरीअ चयो आहे त नथो लॻे त मुस्तक़बिल में ॿीहर ॻाल्हियूं थींदियूं वफ़ाक़ी हुकूमत केपीअ में एमरजेंसीअ वारे ऑप्शन ते गौर करे रही आहे पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौर चयो त हुकूमती होड सबबि ॻाल्हियूं नाकाम थियूं पीटीआई केपी हुकूमत न छॾींदी ऐं नई असेंबली टोड़ींदी लॉन्ग मार्च जारी आहे सोहेल आफरीदी लीड करे रहियो आहे रियासत ऐं केपीअ जो मसइलो सियासत न पर दहशतगर्दी आहे रियासत जो फ़ैसिलो दहशतगर्दनि सां ॻाल्हियूं न पर कारवाई आहे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त ॿिनि सालनि दौरान केपीअ में दहशतगर्दीअ जा 6,000 खां वधीक वाकिया थिया आहिनि 1200 शहादतियूं थियूं आहिनि 37 हमलनि में अफ़गान शहरी मुलविस निकिता आहिनि 14 आपघाती हमला थिया आहिनि जिन में अक्सरत अफ़गान शहरनि जी आहे CTD केपीअ वटि रुॻो 17 बख़्तरबंद गाॾियूं आहिनि केपी हुकूमत ॿुधाए दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे लाइ वटनि कहिड़ी पॉलिसी आहे दहशतगर्दीअ खे हिकु साज़िश तहत मड़ियो वियो आहे ग़लति पॉलिसियुनि सबबि मुल्क विरहाइजी रहियो आहे लॉन्ग मार्च खे ख़िताब कंदे केपीअ जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदीअ चयो आहे त पंहिंजे अवाम सां गॾु बीहणु बेवकूफ़ी आहे त मां बेवकूफ़ आहियां हुकुमराननि वटि अञा बि वक़्तु आहे अवाम ॿाहिरि निकितो त केर बि कंट्रोल न करे सघंदो थर पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल तब्दील करे सघे थो थर जो कोयलो पाकिस्तान जी तवानाई ऐं सनअती ज़रूरत लाइ आम ज़रियो बणिजी रहियो आहे इस्लाम कोट में तक़रीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर सिहत मुराद अली शाह चयो आहे त IPPs दरामदी कोयले बदिरां थर जे मक़ामी कोयले ॾांहुं मुंतक़िल थी रहियूं आहिनि सिंध हुकूमत फेज़ 3 मनसूबो 100% पंहिंजे ख़र्च ते मुकमल करे रही आहे थर फेज़ 3 सां सालियानो अटकल 220 मिलियन डॉलर वाधू नाणे जी बचत थींदी निजकारी कमीशन गेपको जे निजकारीअ लाइ 9 कंपनियुनि खे अहल करार ॾेई छॾियो टी ट्रक ऐं 6 कंपनियूं शामिल ज़रई तरक़ियाती बैंक ऐं HBFC जे निजकारी अमल जो बि तेज़ी करण जे हिदायत इस्लामाबाद कराची ऐं लाहौर हवाई अॾनि जे आउटसोर्सिंग ॻाल्हियुनि लाइ कमेटीअ जी नई सिर जोड़जक कई वई हुकूमत पेट्रोल जी क़ीमत वधीक 88 पैसा वधाए छॾी डीज़ल जी क़ीमत में 1.88 रुपयो फी लीटर लात हफ़्ते जी शुरूआत में पेट्रोल जी क़ीमत में इज़ाफ़ो ऐं डीज़ल जी क़ीमत में मामूली घटिताई कई वई क़ीमतुनि में फेरफार बाद पेट्रोल जो फी लीटर 393.64 रुपया ऐं डीज़ल जी नई क़ीमत 397.76 रुपया फी लीटर मुक़ररु कई वई नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोल ऐं डीज़ल जूं इहे नयूं क़ीमतूं 6 अक्टूबर लाइ मुक़ररु कयूं वयूं आहिनि पेट्रोल ते रिलीफ पैकेज हुकूमत जो एहसान न आहे। हुकूमत खे पेट्रोल लेवी वापसि वठणी पवंदी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त पेट्रोलियम लेवी वारे मामले ते 7 अक्टूबर ते ईंदड़ मरहले जो ऐलान कयो वेंदो। हुकूमत खे पेट्रोलियम लेवी ख़तम करणी पवंदी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खिलाफ़ शागिर्दनि जे एहतजाज जो नोटिस वरितो। सिंध हुकूमत जो वफ़द हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खिलाफ़ शागिर्दनि जे एहतजाजी कैंप ते आमद। आजिज़ दामरा हैदराबाद जो मेयर काशिफ शोरो ऐं ॿियनि जूं शागिर्दनि सां ॻाल्हियूं। शागिर्दनि नतीजनि ते ख़दशनि खां पीपी अॻवाणनि खे आगाह कयो। पीपल्स पार्टी वफ़द शागिर्दनि जा ख़दशा वॾे वज़ीर ताईं पहुचाइण जी मुज़ाहिरनि खे ख़ातिरी कराई।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: सकरण के हो तो आवाज भी
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
4: ब्रॉट टू यू बाय
5: सुपर वाइब्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोजेक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
6: इंशाल्लाह ताला हम इनकी नफरत की सियासत दफन करेंगे और थर तरक्की करता रहेगा
7: सिस्टम जी नाकामीअ ते नवन सूबन वारो मुंतक समझ खां बाहर आहे इस्लामाबाद नाकाम थियो आहे त इस्लामाबाद खे थर वारन हवाले कयो थर जी तरक़ीअ ते समूरो मुल्क हैरान आहे इस्लाम कोट में थर कोल फेज थ्री मनसूबे जो इफ़्तिताह कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी चयो आहे त कराची में सियासी यतीमनि जी जमायत सहयोनी जी सियासत करे रही आहे सहयोनी वारी सियासत खे सिंध में आणण वारी कोशिश खे कामयाब थियण न ॾींदासीं थर जा ॿार टॉप कनि था तव्हां खे वाधायूं ॾियण बदिरां नफ़रत वारी सियासत कयो था थर जी तरक़ी कुझु माण्हुनि खे हज़म नाहे थी रही असां नफ़रत जी सियासत खे दफ़न करे छॾींदासीं इस्लामाबाद जा माहिर चवंदा हुआ त थर जो कोयलो बेकार आहे सीड़पकारी करणु बेकार आहे हाणे पूरो पाकिस्तान हैरान आहे त थर किथे पहुची वियो आहे इस्लामाबाद वारनि खे चवां थो त हू बि थर जहिड़ी तरक़ीअ ते ध्यानु ॾियनि हुकूमत ऐं अपोज़िशन विच में थियल ॻाल्हियुनि जी नाकामीअ जो ज़िमेवार केरु हुकूमत ऐं अपोज़िशन जा हिक ॿिए ते इल्ज़ाम जारी वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरी चयो आहे त नथो लॻे त मुस्तक़बिल में ॿीहर ॻाल्हियूं थींदियूं वफ़ाक़ी हुकूमत के पी के में एमरजेंसी वारे ऑप्शन ते गौर करे रही आहे पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौर चयो आहे त हुकूमती ॾोहोड सबबि ॻाल्हियूं नाकाम थियूं पीटीआई हुकूमत न छॾींदी ऐं नई असेंबली टोड़ींदी लॉन्ग मार्च जारी आहे सुलाफ़रीदी लीड करे रहियो आहे रियासत ऐं के पी के जो मसलो सियासत न पर दहशतगर्दी आहे रियासत जो फ़ैसिलो दहशतगर्दनि सां ॻाल्हियूं न पर कारवाई आहे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त ॿिनि सालनि दौरान के पी के में दहशतगर्दीअ जा 6000 खां वधीक वाक़िया थिया आहिनि 1200 शहादतूं थियूं आहिनि 37 हमलनि में अफ़गान शहरी मुलविस निकिता आहिनि 14 अपघाती हमला थिया आहिनि जंहिं में अक्सरियत अफ़गान शहरनि जी आहे सीटीडी के पी वटि रुगो 17 बख़्तर बंदि गाॾियूं आहिनि के पी के हुकूमत ॿुधाए दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ वटनि कहिड़ी पॉलिसी आहे दहशतगर्दीअ खे हिकु साज़िश तहत मड़ियो वियो आहे ग़लति पॉलिसियुनि सबबि मुल्क विरहाइजी रहियो आहे लॉन्ग मार्च खे ख़िताब कंदे के पी के जे वॾे वज़ीर सोहेल आफ़रीदी चयो आहे त पंहिंजे अवाम सां गॾु बीहण बेवकूफ़ी आहे त मां बेवकूफ़ आहियां हुकुमराननि वटि अञा बि वक़्तु आहे अवाम ॿाहिरि निकितो त केरु बि कंट्रोल करे न सघंदो

हुकूमत पेट्रोल की कीमत वधीक 88 पैसा वधाए छड़ी। डीजल की कीमत में 1 रुपयो 88 पैसा फी लीटर लात हफ्ते की शुरुआत में। पेट्रोल की कीमत में इजाफो आए डीजल की कीमत में मामूली घटताई कई वही। कीमतन में फेरफार बाद पेट्रोल फी लीटर 393 रुपया 64 पैसा ए डीजल की नई कीमत 397 रुपया 76 पैसा फी लीटर मुकर कई वही। नोटिफिकेशन मौजूद पेट्रोल ए डीजल जो ये नयू कीमतू 6 अक्टूबर लाए मुकर कई वही।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
2: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
4: सुपर वाइट
5: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
6: सुनते रहो GFM 90.8

शोर से महके मिले दर्द बहुत कभी तू भी मिल दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल आज फिर आई ना तू इंतजार रहा मुस्तकिल तवील है गम की शाम कहानी मोहब्बत की मुख्तसर नजरसानी करो

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: सुपर वाइट्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम
5: अ प्रोजेक्ट बाय अ

मकामी सीड़पकार मुल्क में सीड़पकारी कंदा त परडे॒ही सीड़प बि वधंदी। हुकूमत मुआशी तरक़ीअ सां गॾु बरामदात में वाद खे तरजीह ॾेई रही आहे। कराची में तकलीफ़ खे ख़िताब कंदे नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त सीड़पकारी ऐं मुआशी तरक़ी लाइ हुकूमत ऐं निजी शोबे खे गॾिजी कमु करणो पवंदो। खैरपुर रियासत जे गोणे वाली अली मुराद खान टालपुर जो मड़ कोट जी जे किले पहुचायो वियो। जनाज़े नमाज़ जूं तयारियूं मुकमिल, वॾे अंग में शहरी जनाज़े गाह पहुतल। लाड़काणे शहर जे बाज़ीगर पुल वटि राइस कैनाल में गुज़िरियल ॾींहुं ॿुॾी वियल लिंगर जो लाश अञा हथ न आयो। मुमताज़ कॉलोनी वासी मेहदी हसन खटियाण जी ॻोल्हा जारी।

0: Let's begin the show.
1: सिंधी मीडिया जो सब खां वडो गेम शो हो जमालो रमजान अल मुबारक जे बाबरकत महीने में केटीएन खणी अची रहियो आहे तव्हां जे लाइ लखे रुपयनि जा इनाम जंहिंमें हूंदा तफ़री सां गॾु तोहफ़ा आसान सवाल ऐं दिलचस्प रांदियूं ऐं तव्हां खटे सघो था कार मोटर साइकिल एलईडी टीवी मोबाइल फोन ऐं खोड़ सारा कीमती इनाम त पोइ स्क्रीन ते ॾिनल नंबर ते कॉल करे पंहिंजी रजिस्ट्रेशन करायो ऐं बणजी वञो असांजे शो जो हिसो हो जमालो सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ केटीएन ते

वक्त हालतूं ऐं वाकिया मुसलसल तब्दील थींदा रहनि था। मुस्तकिल हुजे थी सिर्फ़ तब्दीली। हर पल तब्दील थींदड़ वाकियनि जा नवा पहलू वसी ऐं गहरो नुक़्ता नज़र सिर्फ़ इनसाइड विद नाज़िरा मीर सां।

चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर शेयरिंग इन टू योर वीडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारे से चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, सूर सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल टिप टप सरकूल एक साउंड एकदम स्ट्रॉन्ग हेल के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं, पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स। आप सुनते हैं डेली बेसिस पे, यानी कि मंडी टू मंडी से लेके हर एक डे पूछिए जी, सो आप मुझे सुन सकते हैं। और इसके अलावा जी प्रोग्राम में हम सबसे पहले वक्त की बात करेंगे, तो जी वक्त हुआ जाता है 11:17 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है, तमाम लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त में ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक पे है, जिस पर भी आप जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट अल्लाह अगर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीच को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बस अस्ते खुदा खैर दे मौजूद और तरफ के लिए खुदा खैर दे मतलब वो तमाम तो लोग जो लोग सालगिरह है उनको कहेंगे मेरे मेरे हाथ पर रजन सदे हैवी बर्थडे टू यू। उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे कैचुअल सोन। वो लोगों के लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहे, आमीन। इसके अलावा मेरी आवाज जिन गलियों शहर और पहाड़ों, दरियाओं और मर गुजारों, घर और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे परसारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है, तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम, अहलन वसहलन, मरहबा, बखैर आगे जी आया हूं, सब बिस्मिल्लाह, बोंजोर, शाओ, नी हाओ, एंड वेलकम इनटू जिंदगी गुजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट, सुपर वाइट जो कि आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा सुपर से भी ऊपर हैं। और सुपर वाइट वाले ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा मुफीद और मौजूद हैं। सुपर वाइट के तमाम प्रोडक्ट जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो बहुत बुरा करते हैं, अच्छा करेंगे और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। और सुपर वाइट के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं डे बाई डे, वो साथ साथ आपको बताऊंगी। और साथ साथ आप लोग सुपर वाइट वालों का हेल्पलाइन नंबर भी नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले वो तमाम तो लोग जो कि सखर और लालकाना से ताल्लुक रखते हैं वो इमरान साहब से वो रब्ता कर सकते हैं। इमरान साहब का नंबर है 03147754462। इसके अलावा हैदराबाद वालों के लिए नंबर है जी 03702568321। ठीक है, ये नंबर है, डायल कीजिए और जहां जहां पे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है वहां वहां पे अवेलेबल करवाएं। हम मूव करें प्रोग्राम में एक गाने की तरफ और गाना सुनाएंगे, गाने के साथ हम वापस आएंगे और आगे चलेंगे, आपको बताएंगे हम क्या करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स।

प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. इसी ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, एस के आर टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 888 पर. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/gfm88ngl@fm88.8, जिसके पेज पे आके आप लोगों को मिलती है लाइव ऑडियो स्ट्रीम जिंदगी गुजार होती है. उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के बाद मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी बातें कर सकते हैं. और सुपर वाइक के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि सुपर वाइक के प्रोडक्ट्स जो कि बहुत अमेजिंग किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, फेस वॉशेस की बहुत अच्छी रेंज आती है, ब्यूटी क्रीम्स की बहुत अच्छी रेंज आती है, और आपकी खूबसूरती जिसको लगाती है 4 से बहुत ज्यादा चांद. ठीक है जी, तो सुपर वाइक के तमाम प्रोडक्ट जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं, इनमें इनकी वाइटामिन सी क्रीम आती है. वाइटामिन सी क्रीम के साथ साथ स्ट्रॉबेरी क्रीम आती है, टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम आती है, सुपर वाइक की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम भी आती है, सुपर वाइट की एंटी फ्रेकल क्रीम आती है, सुपर वाइट की ऑयल फ्री एंटी एक्ने क्रीम आती है. इसके अलावा सुपर वाइट राइस ब्यूटी क्रीम आती है. ठीक है, तो सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम और साथ में इनके बूस्टर्स तो बहुत ही कमाल के हैं. और बूस्टर कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आप इनसे फॉर्मूलाज बना सकते हैं और कैसे आप इनका इस्तेमाल बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे. लेकिन हम चलेंगे आगे, एक और गाना प्ले करेंगे. गाने के साथ हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब. वापस आएंगे, वापस आके प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइड अक्सा कॉस्मेटिक्स.

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी खाने पेजी स्किन के लियो एक नौ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थन वती का आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर दी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड
0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
3: It's time to commercial break.
4: खुश और बीरोनो की स्किन और इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेहमे आहिन चावरन जी खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिंद के रिस्टोर करे उन जिंद में की लॉक करे आई चावरन जी खूबियों जिंद में फाइन लाइंस एंड झुरन की घट कर आई रिंकल्स की घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में जिंद के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जेजी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स

0: तू ना मेरा हीटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे नहीं, खुश्क और बीरोनो की स्किन और इन्हीं जलाए छा डैमेज और डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जेह में आहिन चार रंजो खूबियों ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे, ऐ चामरन जो खूबियों जल्द मा फाइन लाइंस ऐ झुरन के घट कन ऐ रिंकल्स के घट करे, सिर्फ ट्रिम नीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट, उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जै जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती, हर हर भी रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है, GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

Okay, Sheila, half is thank you.

ورنہ ہمارا گاؤں جو ویران کو لگا سب آیا ہے

साथ साथ आपको बताते जाते हैं जी, सुपर वाइट वालों का हेल्प लाइन नंबर जो कि आप लोगों ने डायल करना है, सखर और लाड़काना वाले नोट डाउन कर लिए जी, सखर और लाड़काना वाले डायल कर सकते हैं 03-14-77-544-62। ठीक है, दोबारा से रिपीट करूंगी 03-14-77-544-62। इसको डायल कर सकते हैं, जहां जहां पे अवेलेबल नहीं है वहां वहां पे अवेलेबल करवाएंगे सखर और लाड़काना में। ठीक है, इसके अलावा हैदराबाद वालों के लिए जो नंबर है वही जी मुमताज हसन खान साहब का, जो कि डायल कर सकते हैं आप लोग 03-70-25-68-321। ठीक है, इसको डायल कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनकी दूसरी और बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप लोग जिसमें पेट्रोलियम जली का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, और खासतौर पर सर्दियों के मौसम में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती है, जहाँ हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही होती है वहाँ पे हमारे नेल्स भी ड्राई हो रहे होते हैं।

लिया फायदा है सुपर बाइक के प्रोडक्ट्स का, जो कि आप लोगों ने पूरा पूरा उठा लेना है और मार्केट जाए आज ही बाय करें जहां पे अवेलेबल नहीं है. हेल्पलाइन नंबर उन लोगों के लिए मैं बता चुकी हूँ, सो हेल्पलाइन नंबर भी आप लोग डायल करके अपने करीबी मार्केट्स और एरियाज में इन प्रोडक्ट्स को इजीली अवेलेबल करवा सकते हैं.

रवि जी मुंद लाइ सूबनि में पाणी विस बाबति इर्सा जी सलाहकारी कमेटीअ जो इजलास। पाणी जे विस बाबति अहम फ़ैसिलनि जो इम्कान इर्सा जी सलाहकारी कमेटीअ जो।

0: oil-free beauty cream ke natural minerals. Jo bina chip-chip ke chehre par nikhar. Sirf chand dino mein. A project by Aksa Cosmetics Pakistan. घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में जिंदगी बढ़ाए नरम
1: अगर खूबसूरती खपे तो आर्ट्स अपनायो

0: पाकिस्तान में अमा जिते भी हुजो पैजी गाड़ी बुक कराए सको था।
1: बालाज मोटर्स नस्त गार्डन सिटी दादू रोड मोरो प्रोप्राइटर अली बख्श खासकेली अजी राब्तो करियो 03002963322। सोना साई कुछ खबर अथव?
2: अच्छा सोनी
1: मिंडियन का सोलर वाली बैटरी खराब थी पई आई नई बैटरी कदे आनीदा
2: सोनी महंगाई के दौर में नई बैटरी की जरूरत ही कोने पंजी पुरानी बैटरी सरगोदा बैटरी सर्विस वारन दा अजु ही खणी पे वजा वे अधु कीमत में पुरानी बैटरी में नई प्लेग में सेल लगाए बैटरी के सफा नओ करे छरीदा
1: साई पोया बैटरी जल्दी तो खराब को
2: ना ना सोनी सरगोदा बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पे जन बैटरी जी
1: वाह वाह ओ साई जल्दी करियो हाणी वनियो आई बैटरी खाराई छु
2: सरगोदा बैटरी सर्विस जे यूपीएस ट्रैक्टर एंड सोलर वगैरह की खराब बैटरी में नई प्लेग में सेल लगाए बैटरी
3: कंपनी की सब वाली बैटरी में सब नवा सेल लगरा सिर्फ 3500 रुपये में 6 महीन की गारंटी से बेन सभी बैटरी जा सेल पिण मुनासिब कीमत में लगाया वन था। यह ऑफर महदूद मुदत है देर छाजी अज ही अचो पुरानी बैटरी के नव बना
2: मिलंदड़ जुलंदड़ कम का धोखो न खाइंदा राबते मोहम्मद फारूक मोबाइल नंबर 03156829924।
4: अदा गुलाब तोखे ते खबर आ पाण वारो हनी तो घणी वक्त का बीमार आ कपड़ा मेरा पातल पांजे मुंह वती तो गलाइंदो ऐ पाण के ते बीमार समझे ही कोन तो को दसो तले इलाज किथा करायां से
5: भाऊ जुमन अच तो तोखे दस दियां सोल मेंटल हेल्थ लाड़काने वाला माहिर नफ्सियात जी निगरानी में इलाज भी मुफ्त था कन सो के घर बैठे ऐ एक फोन करण सा
1: लाड़काने वासन लाए खुशखबरी शा तमा जे घर या पाड़ी में को एरो मरीज आहे जिन जी सोच आई सोई में तब्दीली आई जे मिसाल जे को पान के बीमार न समझे पंजे मुफ्त ले या गालाई अजायो शक करे सफाई सुथराई जो ख्याल न रखे इस आवाज बुधन में अचन जे की हकीकत में न बचन
5: एड़े मरीज के शिजोफ्रेनिया या स्किजोफ्रेनिया जो अलामतों थी

रगुन हडन दम छाती ज़हनी बीमारिन बारन जे बीमारिन खा अलावा सभी बीमारिन जे इलाज लाए नामवर डॉक्टर्स मौजूद आहिन जड़ो के प्रोफेसर डॉक्टर हाकिम अबलो प्रोफेसर डॉक्टर बशीर अहमद शेख प्रोफेसर डॉक्टर आलम इब्राहिम सिद्दीकी प्रोफेसर डॉक्टर अजीज जलवानी प्रोफेसर

जिते मिले अमाके कराची जे नामवर अस्पतालुन जेड़ो माहौल टाइम रोजानो सुबह जो 10 बजे खा शाम जो 5 बजे ताई एड्रेस जीजल अमर वेलफेयर अस्पताल वेझो पासपोर्ट ऑफिस लाड़काणो राबते जे लाए मोहम्मद अली अबड़ो मोबाइल नंबर 03400362646 खुशखबरी हाने अमाजे पहेंजे शहर रेशम गली लाड़काने में दाऊद एस्थेटिक क्लिनिक जो इफ्तिताह थी चुको आहे डॉक्टर इरम जुणे जो MBBS RMP D-Drum E-Drum UK कंसल्टेंट कॉस्मेटिक डर्माटो

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

Okay, so welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, sponsored by Super White Products, Faya Aksa Cosmetics, और मुझे कहते हैं आरजी रुखसार। आपको मेरा साथ पूरी पूरी 1 बजे तक कर रहे हैं, और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में 3 तरीकाकार से। सिंपली मैसेज कर सकते हैं, सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 पे, कॉमेंट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ऊपर। इसके साथ साथ आप लोग कॉल करेंगे 03000113488 और सुपर वाइकी प्रोडक्ट्स साथ साथ। अच्छा, आप इनसे फॉर्मूला भी तैयार कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम आप लोगों ने लेनी है, ठीक है। सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम लेने के बाद आप लोगों ने लेना है सुपर वाइट सीरम ब्यूटी बूस्टर, ठीक है जी। ये आप लोगों ने लेना है, और सुपर वाइट ब्यूटी सीरम बूस्टर जो कि आप लोग लेंगे, और सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्ने क्रीम लेंगे साथ में, ठीक है। ये 3 चीजें लेंगे। क्या लेंगे? सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम और सुपर वाइट ऑयल फ्री एंटी एक्ने ब्यूटी क्रीम जो कि ट्यूब की फॉर्म में आपको मिलेगी, ठीक है, और साथ में सुपर वाइट ब्यूटी सीरम बूस्टर। ये 3 चीजें लेके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे आप लोग जार में, ठीक है। मेक श्योर आपका जार जो है वो ग्लास या फिर प्लास्टिक का होना चाहिए, उसमें अच्छे तरीके से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद ना इसको स्टोर कर लें। स्टोर करने के बाद इसको रात को रोज सोने से पहले अप्लाई करें, ठीक है। रोज रात को सोने से पहले अप्लाई करेंगे, और रोज रात को सोने से पहले अप्लाई करके सो जाएंगे। मेक श्योर कि उससे पहले आप फेस को वॉश करें। फेस को कैसे वॉश करेंगे? सुपर वाइट के फेस वॉश, सुपर वाइट का ऑयल फ्री फेस वॉश, या फिर जो आपका फेवरेट हो फेस वॉशेस की रेंज में से वो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और वो लेने के बाद आप लोगों ने करना ये है कि फेस को वॉश करना है अच्छे तरीके से। फेस को वॉश करने के बाद अपने फेस के ऊपर ये फार्मूला लगाना है। पहले ही 3 दिन में वाजे विजिबल रिजल्ट देखेंगे। वो तमाम तो लोग जिनकी एक्ने वाली स्किन है, या फिर एक्ने बहुत सारी हो जाती है, एक्ने चाहे किसी भी तरह की हो, लाइक पस वाली एक्ने हो, या फिर पस वाली एक्ने के साथ साथ जो छोटे छोटे से पिंपल्स हो जाते हैं वो वाले पिंपल्स हो, या फिर कोई और एक्ने हो जिसके निशानात वो छोड़ जाती हो, निशान सालों तक नहीं जा रहे होते, वो वाली एक्ने हो तब भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और ये फार्मूला स्पेशली उन तमाम तो लोगों के लिए है जिनकी स्किन टाइप ऑयली है, तो ऑयली स्किन टाइप वाले लोग जो है इस फार्मूले को ईजीली अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। इसकी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं।

इसके साथ साथ हम कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ भी आते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट और मैसेजेस आप लोगों के मुझे रिसीव हो गए हैं और मैंने काफी टाइम से रीड ही नहीं की अभी तक. सो गाने को चेंज करके हम ना कमेंट्स की तरफ मूव करते हैं. हियर कम्स क्लासी विद अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. रशीद खोसो के कमेंट आए हैं जी बहुत सारे, और थैंक यू सो मच आपका. रशीद खोसो हमें सुन रहे हैं, रिहाना खान बक्कर से हमें सुन रहे हैं, जवान मोहम्मद बच्चल हमें सुन रहे हैं, और जवान मोहम्मद बच्चल थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो. सरफराज अली हमें सुन रहे हैं, खड़ी बलोच फ्रॉम कराची, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, शो इज वेरी नाइस, मैं ठीक हूँ, आप ठीक ठाक हैं. हाली सुल्तान हाय ससित मौजूद है, हाली सुल्तान कहती है अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, हेलो हाय, खाना खिला कर जाना. अच्छा मुझे भी खाना है. अच्छा कहते हैं कि जितना जितना आसानी से आप समझती हैं उतना आसान नहीं है हाथ पांव को भी चिट्टा करना. नहीं, जितनी आसानी से मैं समझाती हूँ ना तो उसको आसान ही समझे, अगर उसको मुश्किल समझेंगे ना तो वो नहीं होगा आपसे. मतलब ये तो चले हाथ पांव चिट्टे करने की बात है, अगर आप किसी भी चीज को लेके सोचेंगे ना कि ये मुश्किल है ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो वो वाकई होता ही नहीं है. ठीक है, तो अगर आप ये सोचेंगे ना कि चले मुश्किल है थोड़ा सा हो जाएगा, तो वो हो जाता है. तो ये सारा कुछ हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, है ना. तो सोच अच्छी रखेंगे तो फिर मंजिल करीब नजर आएगी और रास्ते आसान नजर आएंगे. ठीक है, तो ये बात है. अच्छा, इसके अलावा जी स्मार्ट किशोर कहते हैं हम भी वापस जा रहे हैं. किधर जा रहे हैं, लग रहा है आजकल आपकी जो बॉस है ना वो आपको कुछ मतलब कि ज्यादा टाइम नहीं दे रही है छत पे जाने का, है ना, ऐसा है क्या, कुछ और है. अच्छा, इसके अलावा सरफराज अली खड़ी बलोच फ्रॉम कराची, हाय रुखसार, हाय. अच्छा, मुगल उमरानी हमें सुन रहे हैं, बहुत सारी इमोजीज सेंड किए जी, थैंक यू. और इसके अलावा जी आप लोग मुझे मैसेजेस भी कर रहे हैं.

0: ओके कॉलर लेते हैं जो लाइन पे कॉलर होंगे नेक्स्ट. हेलो
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: कैसे आप? ठीक है? तबीयत कैसे आपकी?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. फारूक भाई बात कर रहे हैं?
1: जी जी बिल्कुल.
0: फारूक भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं.
1: करम है अल्लाह पाक का. सबसे पहले तो आई एम सॉरी, दिल से माजरत आपसे, क्योंकि इस बार मैं आपको बर्थडे विश नहीं कर पाया. लेकिन मेरा भी कसूर नहीं है, मुझे आप कहीं नजर ही नहीं आई.
0: मुझे हाँ आप, मैं बिल्कुल कहीं पे नजर नहीं आई आपको, और वाकई ऐसा है. खैर कोई बात नहीं फारूक भाई. और मुझे ये बताएं कि प्रोग्राम सुनते हैं?
1: जी मैंने अभी सुना तो पता चल गया कि आपको अलहमदुलिल्लाह कोई स्पॉन्सर शो मिला है. मुझे तो पता ही नहीं आप कब से कर रही हैं.
0: बिल्कुल जी, इसको कोई एक हफ्ता होने वाला है जी. फ्रॉम 1 अक्टूबर से हम इसको कंटिन्यू किए हुए हैं. खैर फारूक भाई मुझे बताइएगा कि सुपर वाई के प्रोडक्ट यूज करने का इरादा है?
1: चलो आप बोल रही हैं तो आई एम ट्राई टू विल बी बेस्ट.
0: चलिए ठीक है जी. और कुछ कहेंगे फारूक भाई?
1: अब सभी सुनने वालों को सलाम दो अगेन से. आई एम सॉरी मैं दिल से माफ़ करता हूँ.
0: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इट्स टोटली फाइन. थैंक यू सो मच फारूक भाई. अपना बहुत सारा ख्याल रखें.
1: ओके आप भी अपना ख्याल रखिएगा.
0: ओके जी अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.

0: एक कॉल कॉलर. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम बहन जी.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: मैं बात कर रहा हूँ रंगपुर से.
0: कहाँ से?
1: रंगपुर.
0: रानीपुर से. कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
1: बहन जी उबाड़े से. उबाड़े से.
0: अच्छा ठीक है, उबाड़े से बात कर रहे हैं. कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहन जी, बहुत तबीयत सही है मेरी. नहीं है.
0: अच्छा ओके, अल्लाह ताला आपको जल्दी से सेहतियाबी दे, आमीन. प्रोग्राम सुन रहे हैं? आवाज़ सही नहीं आ रही मेरी. चले आवाज़ को क्लियर करेंगे और मुझे बताएं कि जी जी जी जी बोलिए. ओके कॉल ड्रॉप हो गई है. बहुत सारी लाइव कॉल्स आप लोगों के इंटरचेंज करेंगे 03000113488. मेरे पास होगा एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक और दोनों के बाद वापस आएंगे, यानी कि गाना और कमर्शियल ब्रेक. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइज.

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी.
0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम. हेलो.
0: This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में. डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस. अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में. डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक.

पिंडी के रई जादों के लिए एक नया सॉन्ग रई जादा मजा राही की आवाज में। डायरेक्टर आसिफ मसूद, लिरिक्स कैसर नदीम गुड्डू, म्यूजिक जाहिद अली मूर्ति, मॉडल महर यार। कमिंग सून ऑन

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी हजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल्स और मैसेजेस कर सकते हैं.

321, ठीक है, हैदराबाद वाले यही डायल करेंगे. और कोई भी जो रेंज है अक्सर कॉस्मेटिक्स वालों की, अगर वो मिसिंग है आपके एरिया में या फिर आपके सिटी में, तो फिर आप इसको अवेलेबल करवा सकते हैं. और सुपर वाई की राइज ब्यूटी क्रीम आप लोग ऐड करेंगे अपनी स्किन केयर रूटीन में, तो सुपर वाइट की राइज ब्यूटी क्रीम जिसको आप लोग ऐड कर सकते हैं, वो तमाम तो लोग जो कि कोरियन ग्लास स्किन हासिल करना चाहते हैं और कोरियन ग्लास स्किन नहीं है उन लोगों की, और उनका ड्रीम है कि हमारी कोरियन स्किन हो जी और बिल्कुल बेदाग स्किन हो, तो आप लोग सुपर वाइट की राइज ब्यूटी क्रीम जो है अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं. तो सुपर वाइट की राइज ब्यूटी क्रीम को अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करें, और इसके साथ इसका सिरम जो है ना आप लोग इसमें ऐड करना ना भूलें. सुपर वाइट का राइज सिरम, सुपर वाइट का राइज कोलेजन सिरम जो कि आप लोग इसमें ऐड करके इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको डबल से ट्रिपल कर सकते हैं. ठीक है, सिरम को आप लोगों ने क्रीम के अंदर पूरा मिक्स कर देना है. मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसको स्टोर कर लेना है. स्टोर करने के बाद इसको रख लें, और रात को सोने से पहले अपने फेस को वॉश करें सुपर वाइट के राइज कोलेजन फेस वॉश से. ये एक ऐसा फेस वॉश है जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन डे बाई डे कोरियन ग्लास स्किन बनती चली जाएगी. ठीक है, और फेस को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद क्रीम को अप्लाई करें. अप्लाई करने के बाद सो जाएं, सुबह फिर से फेस वॉश करें. ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने जो है अप्लाई करनी है अपनी स्किन केयर रूटीन में डेली बेसिस पे, इसको आप लोगों ने ऐड करना है. और इसी के साथ हम चलेंगे आगे, आप लोगों की कॉल्स और मैसेजेस को भी इंक्लूड करेंगे जो कि बहुत सारे मुझे रिसीव होते जा रहे हैं.

0: साथ में आप लोगों के लाइव कॉल्स को इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट कॉलर मेरे लाइन पे मौजूद है. हेलो. ओके हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो. ओके जी, आवाज नहीं आ रही है कॉलर की, कॉल ड्रॉप हो चुकी है. 0300-11-3488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग. मुझे एक और कॉलर लेंगे. हेलो
1: हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं?
1: हेलो,
0: आवाज आ रही है मेरी? कौन बात कर रहे हैं यहाँ से? ओके जी, ये कॉल विड्रॉप. 0300-11-3488 एक और ट्राई करेंगे जी. हेलो. वालेकुम अस्सलाम सरदर, कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. मुझे बताओ, प्रोग्राम सुन रही हो?
2: ऐसे थोड़ी ना कॉल करती हूँ.
0: ऐसे थोड़ी ना कॉल करती है सरदर्द. अच्छा सरदर्द, मुझे बताओ कि सुपर वाई का प्रोडक्ट लिया है कोई?
2: नहीं, अभी तक गई नहीं हूँ, तो अगर जाना होगा तो ले लेंगे.
0: अगर जाना होगा तो ले लेंगे, मतलब जाने में भी इतनी सुस्ती?
2: नहीं, आप कहेंगे तो मैं जरूर लूंगी.
0: मैं कह तो रही हूँ ले लेना.
2: जी
0: ठीक है, क्या कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगी? मैं बताऊं?
2: हाँ
0: मैं बताऊं.
2: ऑयली स्किन
0: टाइप है

0: तो ऑयली स्किन के लिए ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम यूज करो, ठीक है? ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम
1: जरूर लेनी,
0: चले ठीक है। और उसके साथ उसका फेस वॉश और सिरम ऐड करना मत भूलना, ठीक है? और कुछ कहना है? ओके, और कुछ? थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और ये थी स्वीट कॉलर सरदर्द, इसी के साथ हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट सॉन्ग हम प्ले करेंगे राहत फतेह अली खान की आवाज़ में, उसको सुनेंगे और आगे चलेंगे।

0: Luggage, beautiful song by Rahul Fateh Khan. और इसके साथ साथ हम चल रहे हैं आगे और कॉल्स आप लोगों की लेंगे. बहुत सख्त मुकाबला है जी वक्त का. 03000113488 के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स को एंटरटेन करेंगे और कॉल्स आज पता नहीं क्यों एक के बाद एक ड्रॉप होती जा रही है. खैर इसके साथ साथ सुपर वाई के प्रोडक्ट स्मार्ट किशोर का कॉमेंट आया है. वालेकुम असलाम सरदर्द, खुश रहो. अच्छा सरदर्द खुश रहे और हमारा क्या, हम खुश ना रहे फिर कोई बात. और इसके अलावा स्मार्ट किशोर ने हमें छत वाली बात का जवाब नहीं दिया कि मैडम ज्यादा सख्ती कर रही है आपके साथ. अच्छा इसके अलावा जी और भी बहुत सारे कमेंट हैं. अब्बासी के साथ ये आईडी का नाम है और इससे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता ये कोई पाकिस्तान से है, ये कोई है जी फॉरेन कंट्री और वहाँ से कोई कमेंट आ रहे हैं अंग्रेजी में. मुझे तो आती नहीं है तो मैं कैसे पढ़ूंगी. अच्छा इसके अलावा जी कहाँ गए कमेंट, कहाँ गए कमेंट, कमेंट की तरफ आएंगे लेकिन एक कॉल लेंगे. सो नेक्स्ट कॉलर. हेलो.
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन
1: आपके साथ लाड़कों से आपका क्या चल रहा है?
0: कैसे ही ठीक ठाक
1: परवाई मैं ठीक हूँ. आप सुनाए आप कैसे हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और मुझे बताएं कि सुपर वाई के प्रोडक्ट कौन से यूज कर रहे हैं?
1: यूज नहीं कर रहे इंशाल्लाह हम मार्केट जाते रहे.
0: चलें जरूर लें. थैंक यू सो मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखें.

ओके जी, वक्त का मुकाबला बहुत ज्यादा सख्त और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि आप लोग यूज करेंगे और सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम भी यूज करेंगे, सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट के फेस वॉशेज जो कि आप लोग यूज करेंगे, तो सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को यूज करना ना भूलें, सुपर वाइट की टर्मेरिक क्रीम जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। वो तमाम लड़कियां जिन लोगों की शादी होने वाली है, खासतौर पर वो लड़कियां जो कि अभी सुन रही हैं और शादी भी होने वाली है, तो लड़कियों सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम लगाओ और सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम जो कि 3 दिन में विजिबल रिजल्ट्स देगी, ठीक है, स्किन को बूस्ट करेगी, रेडिएंट बनाएगी और इसमें टर्मेरिक के जो एक्सट्रैक्ट्स है ना वो आपके कॉम्प्लेक्शन को जल्दी जल्दी से ब्राइटन अप करेंगे और स्किन जो है ना शादी में बड़ी खूबसूरत लगेगी। तो वो लोग जिन लोगों की शादी होने वाली है, चाहे मर्द हजरात हैं या खवातीन, खास तौर पर खवातीन, ठीक है, तो वो यूज करेंगी सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम। अगर आप एक अच्छी सी ब्यूटी क्रीम ढूंढ रही हैं तो जरूर शादी से पहले टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करें, इसके जो रिजल्ट्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। और सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर इसमें ऐड कर लें, डबल हो जाएंगे रिजल्ट्स। और इसके साथ सुपर वाइट का टर्मेरिक फेस वॉश यूज करना ना भूलें। रात को सोने से पहले फेस को वॉश करें, वॉश करने के बाद ना इसको अप्लाई करें और अगर इसमें बूस्टर ऐड कर लेंगे तो सोने पे सुहागा, और फिर इसको अप्लाई करें रात को सोने से पहले, आप इसके विजिबल रिजल्ट्स देख पाएंगे पहले ही 3 दिन में। और जहां जहां पे प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे वहां वहां पे सखर और लालकाना में अवेलेबल करवाने के लिए 03147754462, इसके अलावा हैदराबाद वालों के लिए 03702568321, ये हेल्पलाइन नंबर पर डायल करें और अपने करीबी मार्केट्स और एरियाज में अवेलेबल करवाएं। और इसी के साथ हम लास्ट में अच्छा सा गाना प्ले करेंगे एंड अच्छा सा गाना इज वेरी ब्यूटीफुल जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, इसको प्ले करेंगे, द सॉन्ग कॉल्ड छलड़े छलड़े वाल। सो फाइनली इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दिस इज मी आरजी रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज।

हुकूमत ऐं पीटीआई में जारी चिकटाण घटि न थी। घरू मामलनि बाबति मुल्कती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त ॻाल्हियूं रुगो केपी खे दहशतगर्दी जे ख़ात्मे बाबति थियूं हुयूं। ॻाल्हियुनि में बुनियादी नुक़्तनि ते बि इतफ़ाक़ थी वियो। पाकिस्तान मां दहशतगर्दीअ जो ख़ात्मो करणो पवंदो। असां पाकिस्तान जी सलामती ऐं तहफ़ुज़ी जंग विड़ी रहिया आहियूं। केपी खे जो वॾो वज़ीर वज़ारत बचाइण पार करे न सघंदो। सदर ऐं वज़ीर आज़म फ़ैसिलो कयो त केपी खे गवर्नर राज लागू थी वेंदो। केपी खे जे गवर्नर फैसल करीम कुल चयो आहे त उन्हनि वटि 20 लख माण्हू गॾु करण जी ऐं सोहेल आफ़रीदीअ जो सूबे ते कंट्रोल नाहे। मुराद सैद जे चवण ते हलंदो आहे। सऊदी अरबी बागन में चकरियूं जारी। सऊदी अरब में तेल कंपनी अरामको खे निशानो बणाइण जी दावा। यमनी इमदादी सामान आहे जंहिंजे हिकु ॼणो शहीद थियो आहे।

0: दबे जी मुंद लाइ सूबनि में पाणी विर्छ बाबति हिसा जी सलाहकारी कमेटीअ जो इजलास, पाणी जे विर्छ बाबति अहम फ़ैसलनि जो इम्कान, हिसा जी सलाहकारी कमेटीअ जो इजलास चेयरमैन अमजद सैद जी सदारत हेठि जारी। रवि जी मुंद दौरान चइनी सूबनि में पाणी जी विर्छ बाबति अहम फ़ैसला कया वेंदा ऐं सूबनि में पाणी प्लान विरिहायो वेंदो। सिक्योरिटी फोर्सिस जो केबीके जे इलाइक़े उत्तर वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन 5 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया, 2 ज़ख़्मी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि उत्तर वज़ीरिस्तान में ॻुझी इतलाउ ते फोर्सिस दहशतगर्दनि जे ताक़तुनि खे निशानो बणायो वियो। ऑपरेशन जे नतीजे में 5 ख़ारजी दहशतगर्दनि खे जहनुम भेड़ो कयो वियो। सदर आसिफ़ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ गरू, वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई ते फोर्सिस खे भेटा पेश। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी रखण वारे अज़म जो वर्जाओ। मकामी सीड़पकार मुल्क में सीड़पकारी कंदा त परॾेही सीड़प बि वधंदी। हुकूमत मुआशी तरक़ीअ सां गॾु बरामदात में वाध खे तरजीह ॾेई रही आहे। कराची में तकरीब खे ख़िताब कंदे नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त सीड़पकारी मुआशी तरक़ीअ लाइ हुकूमत ऐं निजी शोबे खे गॾिजी कमु करणो पवंदो। गॾियल क़ौमुनि जो सेक्रेटरी जनरल एंथोनी गुतरस पाकिस्तान जे दौरे ते इस्लामाबाद पहुची वियो। एंथोनी सदर
1: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही है हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है। सुपर

0: ऐं फिफड़नि ऐं गुर्दनि जूं बीमारियूं। क्लिनिक कराची मेडिकल ऐं डायग्नोस्टिक सेंटर नज़द घिंटी फाटक लाड़काणो। मुआइने जो
1: मेडिकेयर सेंटर पीएम कॉलोनी मीरपुर खास। वधीक मालूमात लाइ
0: अपॉइंटमेंट जे लाइ मोहम्मद रफीक सरगाणी, मोबाइल नंबर 0332031731।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

तुम्हारी उम्मीद तो मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद तो मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुने अब्दुल्ला तमाम खूबसूरत नाजू मई सुने समात उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। समंदर चाहतों की बारिश और लाजवर खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आसे कल तक से शाम तक दिन से डाले से आसमान तक जिंदगी से मौत तक चांद से तारे तक हमसे खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखे मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरा और मातली और नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं White Asian D-Skin Beauty Show स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है D-Skin Beauty Products के तावन से। और यहाँ पर D-Skin Beauty Products के बारे में आप लोगों के साथ बातें होंगी जनाब, और क्यों ना हो, क्योंकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि D-Skin Beauty Products आपकी खूबसूरती के लिए क्यों और कैसे जरूरी है। तो अगर आप भी D-Skin Beauty Products का यूज कर रहे हैं या फिर आप यूज करने वाले हैं तो आप लोग मुझे बताएंगे जरूर कि भाई D-Skin Beauty Products के यूज के बाद आप लोगों को कितने अच्छे वाले रिजल्ट्स मिल चुके हैं। और साथ ही साथ अगर आप भी चाहते हैं भाई हम भी लगाने वाले हैं, हम भी लगाना चाहते हैं लेकिन थोड़ा बताएं तो कैसे और क्यों लगाएं, तो बिल्कुल आपको हम बताएंगे इस पूरे प्रोग्राम के अंदर कि भाई D-Skin Beauty क्रीम हो या फिर D-Skin फेस वॉश हो, इसकी क्या क्वालिटीज हैं जो कि भाई आप लोगों को D-Skin Beauty क्रीम एंड D-Skin फेस वॉश लगाने पर मजबूर ही कर देंगे। ओके जी, क्या ही शानदार प्रोडक्ट्स लेकर हाजिर हो चुके हैं भाई आपके पास। आपने इस तरह का कोई प्रोडक्ट कभी नहीं ट्राई करके देखा होगा, क्योंकि जितनी भी सारी बातें आप लोगों को मैं D-Skin Beauty Products के बारे में बताती हूँ ना, वो तमाम बातें सच्ची। और जब D-Skin Beauty Products का यूज कर रहे हैं आप, तो आप लोगों को इस चीज की भी टेंशन नहीं होगी कि भाई हमारी स्किन टाइप जो है ना वो कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं कर पाती, हमारे चेहरे पर कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो जल्दी में सूट नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है। तो आपकी स्किन किसी भी तरह की है, आप मर्द हजरात हैं खवातीन हैं, हर कोई D-Skin Beauty Products का यूज कर सकता है। और जनाब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं और जितनी भी खूबसूरत सी समाती हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। साथ ही साथ अपना भी तारुफ करवाते हैं सुन लिसनर प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड यू डीजे सदरा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। और साथ ही साथ आप हमारे साथ कौन है मुझे लाजमी बताइएगा और जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स अंत की हालत उन कैसे ही आपकी हालत उन उम्मीद शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी ना वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहेगा ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि पूरे 2 घंटे हमारे पास मौजूद होंगे जनाब। और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ करेंगे शाली बातें, और इन्हीं शाली बातों में जाहिर सी बातें D-Skin Beauty Products के बारे में तो बातें होंगी होंगी, साथ साथ आप लोगों को सुनाएंगे जी मजेदार सी गाने, आप लोगों के साथ होंगी गपशप और आपके प्यारे प्यारे फीडबैक्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, चाहे आप हमें कामों के दौरान सुन रहे हैं या फिर अपने सारे काम कर लिए फ्री होकर बिल्कुल हमारा इंतजार कर रहे थे, या फिर आप बिल्कुल वेले शेले होकर हमारे साथ साथ मौजूद हैं जनाब, तो आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी ऐसी खवातीन हमारे साथ मौजूद होती हैं जो कि अपने कामों के दौरान में सुन रही होती हैं। भाई किचन में भी हमारा शो सुना जाता है, क्योंकि बहुत सारी खवातीन इस टाइम लंच बना रही होती हैं, या फिर आप हमें सुन रहे हैं अपना कोई भी काम करते करते, तो आप लोगों को वेलकम करने के साथ साथ जनाब प्रोग्राम में ये चीज के बारे में भी पता होना चाहिए कि आप D-Skin Beauty Products का यूज भी करने वाले हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो है ना आपको सुनाने के लिए प्रोग्राम का पहला वाला कलाम होने वाला है, तो हम ऐसा करते हैं बाकी बातें जो है ना वो थोड़ी बाद में करते हैं, आप लोगों के लिए प्रोग्राम का पहला वाला कलाम लगा लेते हैं। प्रोग्राम का पहला वाला कलाम हम सुनते हैं और कलाम सुनने के बाद हम जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो आप लोगों को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। सो आप सुन रहे हैं वाइट एश एंड D-Skin Beauty शो स्पॉन्सर्ड बाय D-Skin Beauty Products, लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

क्या बात है, आप सुन रहे हैं वाइट डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जाता है, और क्यों ना बताया जाए, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट जब मार्केट में आप लोगों को मिल रहे हैं तो भाई आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप जाइए और परचेज करके आ जाए, और हमारा भी फर्ज बनता है कि आप लोगों को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाए, ताकि आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो कि मार्केट में आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छे प्रोडक्ट्स मौजूद है। और इसी के साथ साथ अगर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को हर वो प्रोडक्ट्स जो इस तरह के बताए जाते हैं ना कि भाई आप इस्तेमाल करें आपके लिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि अब आपके पास कुछ अच्छा मौजूद है। यानी कि जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगा कर थक जाते हैं, बेजार हो जाते हैं, तब हमें महसूस होता है कि भाई काश कोई ऐसा प्रोडक्ट हमें बता दिया जाए जो लगाएं तो हमारे चेहरे की ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। तो बिल्कुल आप लोगों के पास डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद है, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम करेगा, बल्कि आपके चेहरे पर ये जो गंदगी जमा हो जाती है, ये जो रिंकल्स आ जाते हैं, ये जो फ्रेकल्स आ जाते हैं, ये जो क्रेकल्स आ जाते हैं, उन चीजों का भी खात्मा कर देते हैं। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो आपको वेलकम कहा जाता है, लाजमी से कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते जा रहे हैं। उसी के साथ साथ डिटेल्स क्या होने वाली है जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये बताएंगे कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछा जा रहा है। तो आज के प्रोग्राम का सवाल जो होगा वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप मुझे बताइए कि जनाब कौन सा रंग है जो हम खाते हैं। हाँ जी, वैसे तो बहुत सारे रंग हैं जो कि हम देखते हैं, कुछ रंग हम पहनते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा रंग है जिसे हम खाते हैं। उनके अलावा अगर तहां सनी प्रोग्राम जो हिस्सों थे चाहिए था शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे जी, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनने वाले फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। पेज पर आइए, आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। शेयरिंग इज कैरिंग होती है, लाजमी से हमारी पोस्ट को शेयर कर दिया करें, और लाइक करना भी आप ही लोगों का काम होता है। तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और मुझे बताइए कि आप भी हमें सुन रहे हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल जी, आज आप मुझे बता रहे हैं कि वो कौन सा रंग है जो हम खाते हैं। आप मुझे जल्दी से सवाल का जवाब बताइए। यहाँ पर आप लोगों को मैं बताती हूँ कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने वाले हैं तो आपको कौन से नंबर्स के ऊपर रब्ता करना चाहिए। वैसे तो कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई हमें बताइए, हमें फलां जगह से नहीं मिल रही डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो हम क्या करें। आपको कुछ और नहीं करना, बस आपको जो नंबर बताने लगी ना उन नंबर्स के ऊपर आपने रब्ता करना होता है। आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उनको बताइए कि भाई साहब हमारे एरिया में डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही है, काइंडली आप अवेलेबल करा दें, तो वो जल्दी से अवेलेबल करा देंगे। तो जल्दी से आपने नंबर्स को नोटिस कर लेना है। ओके जी, सो पहला नंबर होने वाला है 0332738 4309। बुरी 332 है 73 84 309। मेरा नंबर आहे 03 12 50 25 907। बुरी 312 50 25 907। बिल्कुल सही, ये तारिक भाई का नंबर है। इस नंबर के ऊपर आप रब्ता कर इजीली अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल करा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से अवेलेबल कराइए और आप भी खूबसूरत होते जाइए, क्योंकि आप भी डिजर्व करते हैं कि आपके पास अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए। क्योंकि जब हम मार्केट जाते हैं तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमें कौन सा प्रोडक्ट लगाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर ये चीज आप याद रखा करें कि आप जो भी प्रोडक्ट का इंतखाब करें तो वो इस तरह का होना चाहिए कि भाई आपकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाए। तो यहाँ पर अगर हम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए हैं जनाब, मेडिकेटेड फार्मूले के साथ हैं, और क्या ही जबरदस्त क्वालिटीज हैं जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम की आप लोगों को बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं तो आपको वेलकम इन खुशामदी। सबसे पहले जो मुझे कमेंट मिला है वो जवार मोहम्मद बचल शंबानी भाई का मिला है, आप हमारे साथ मौजूद दीजिए, आपको वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं। नजीर खोसो में सुन रहे हैं बलोचिस्तान से, कहते हैं कि पहाड़ पर चढ़ने वाला हमेशा झुक कर चलता है और पहाड़ से उतरने वाला अक्सर अकड़ कर, जिंदगी भी यही सबक देती है कि जो आजजी अख्तियार करता है वो बुलंदियों की तरफ बढ़ता है, और जो तकब्बुर में चलता है वो जवाल के करीब होता है। बिल्कुल जी, क्या अच्छी बात आपने शेयर कर दी है। अली
अकबर बिरोही भाई हमारे साथ है विलेज मोहम्मद उस्मान बिरोही सकरण से। अली अकबर बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम, शो वेरी नाइस है सिद्रा मुस्कान, प्रोग्राम की क्या तारीफ करें, अच्छी आवाज के साथ प्रोग्राम गुड लाइफ विल वेलकम। ओके जी आपको भी वेलकम सिद्रा जी, सॉन्ग रिक्वेस्ट है मां कोशिश कंदा बिल्कुल भावनजू फरमाइश जेके लगाए सगूं प्रोग्राम जे अंदर। आई तमाम यो हाल अहवाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो या खाली बस प्रोग्राम बुधण में मसरूफ आयो? बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो। मुलाजिम भाई कहते हैं सलाम सिद्रा, बेस्ट स्टार्ट A1 शो, थैंक यू वेरी मच मुलाजिम भाई। जमशेद फारूकी हमारे साथ हैं और परी मरियम हमारे साथ हैं और जारिश शाहमीर हमारे साथ हैं मुजफ्फरगढ़ से, आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है बहुत शुक्रिया जी, आपको भी वेलकम हो गया। अली अकबर ब्रोही भाई आपको बिल्कुल गाना सुनाते हैं, आप अपनी सीट पर बने रहिए जरा। और साजिद हुसैन सुमरो सलाम सिद्रा मुस्कान मोलल इस्लाम अदर दी स्किन लगायो नाइस है, हाँ जी बिल्कुल दी स्किन ब्यूटी क्रीम नाइस आ है जेके लगायन पया बिल्कुल यही चवन पया। आप हमें सुन रहे हैं DIG ऑफिस लाड़काना से, फायजा का गाना सुनाए हाजिर तांगे फायजा जो गानो बुधरायो वींदो। और अली रजा लगारी भाई हैं गोठ जाम खान लगारी से, वालेकुम अस्सलाम कहते सिस्टर केसी आप शो तमाम नाई से सॉन्ग सुनाए हाजिर बिल्कुल तांजी पसंद जो गानो हलायो था। डेडिकेट टू अजहर लगारी आकिब लगारी आरजे गुलाम मुस्तफा टालपुर और इमाम बख्श खोखर, सिस्टर डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत कमाल की है, सिस्टर जो लिसनर हैं उनको भी मेरी सलाह है कि आप एक दफा यूज करें डी स्किन ब्यूटी क्रीम। बिल्कुल जी सारे लोग इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्योंकि आप इस्तेमाल करें आपको अच्छा रिजल्ट मिल चुका है, तो अब सुनने वाली समाजों को भी ये पता चलेगा कि भाई साहब अब एम नहीं बता दे डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाकई कमाल का प्रोडक्ट है। और जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल वो ये कह रहे हैं कि भाई तमाम जिन ना ही लगाई अना ताई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो तमाम भी ट्राई करे ॾिसो यकीन तमाम के भला रिजल्ट मिली वेंदा। उनका अलावा तारिक भाई हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, कहते अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई। और लिखते हैं कि अदी सखर में दिलशाद जनरल स्टोर, वकार जनरल स्टोर, फारूक जनरल स्टोर, न्यू फैशन जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है और डिस्काउंट के साथ दे रहे हैं, हमारी क्रीम मेहनत के साथ सेल कर रहे हैं, दिल लगाकर काम कर रहे हैं, क्या बात है। जितने भी सखर वाले लोग हमें सुन रहे हैं वो इन तमाम जनरल स्टोर से जाकर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज कर सकते हैं वो भी डिस्काउंट के साथ क्या बात है भाई साहब। तो आप सखर वाले लोग जाइएगा दिलशाद जनरल स्टोर पर, वकार जनरल स्टोर पर, फारूक जनरल स्टोर पर, न्यू फैशन जनरल स्टोर पर, यहाँ पर आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश इजीली मिल जाएगा, तो जाइएगा और परचेज कीजिएगा। ऐसे हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम इन मौला इस्लाम मदद, कहते ओ माय फेवरेट आरजे मैडम मुस्कान जी कैसी आप, वेलकम कहते हैं दिल से, आपको भी दिल से वेलकम कहते हैं जी, क्या याद करेंगे। शीजा अली शीजा की निदड़ी हमारे साथ है, शीजा की निदड़ी कहती है अस्सलाम वालेकुम स्वीटी, कैसी हो तबीयत ओके शोके है ना, मेरी तबीयत ओके शोके नहीं इसीलिए मैं गुम हूँ, कुछ दिन और शो बेस्ट है हमेशा की तरह, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी। और हजार भाई हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम हजार भाई। और हमारे साथ है महर इरफान सियाल साहब, कहते हैं ग्रेट होस्टिंग मैम आरजे, गुड आफ्टरनून मैम, डी स्किन ब्यूटी क्रीम इज बेस्ट, यस डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना वो बहुत कमाल का प्रोडक्ट है, जितने लोगों ने लगा लिया भाई उनका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिलता जा रहा है। मुझे सच्ची बताऊं तो बड़ी खुशी होती है जब आप लोग मुझे आकर बताते हैं कि बाजी असां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल किया हुआ है, एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल असांजी खूबसूरती के सफा चार चंड लगाए छा है, सो तमाम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर ॾिसो जेके भी सोना माण्हू असांखे ॿुधनि पिया, ऐं तव्हां पंहिंजी खूबसूरती जो ख़्यालु रखणु चाहियो था त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल त लाज़मी थी चुको आहे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम उहा क्रीम आहे जेका तव्हां जी खूबसूरती जी हिफ़ाज़त कंदी ऐं तव्हांजी खूबसूरती खे वधाए छॾींदी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में डिटेल सां तव्हांखे मां अची ॿुधायां थी, छो त हिते टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक वठूं था सफ़ा नंढड़ा पितकड़ा, उन खां पोइ जल्दी मोटी तव्हां ॾे अचूं था, तव्हां काॾे न वञिजो हिते वेठा हुजो, ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटूं था, स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: अरे मैं खुश और बेरोनों की स्किन और इन्हें जलाए छा डैमेज ए डल स्किन के कहो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम.

बाद लोग आपसे पूछेंगे कि बताएं तो जरा क्या इस्तेमाल किया है। आप इतनी ज्यादा खूबसूरत हो चुके हैं, कमाल सिर्फ और इसके ब्यूटी क्रीम का है जनाब। आपकी स्किन को मजीद निखारने के लिए जरूरी हो चुका है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि केयर करना स्किन की क्यों शामिल कर लेते हैं, तब आपकी जिंदगी जो है ना वो निखर जाती है और आपकी स्किन जो है वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाने के क्या तरीके कार हैं ये बिल्कुल आप लोगों को समझाएंगे। और जो आप लोगों को ये बताती हूँ ना कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीड्स हैं और माइक्रो बीड्स हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है ना, इसके अंदर वो चीजें ऐड की गई है कि आप पूरे पाकिस्तान में अगर रिसर्च करते हैं तो 2 से 3 प्रोडक्ट के अंदर वाइटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स पाए जा रहे हैं। तो उन दोनों 2-3 प्रोडक्ट्स में डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि भाई अमीरन वाली फील अच्छी थी। तो अगर आप भी अमीरों वाला फील लेना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज लाजमी करके देखिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती पे 4 चांद लगा देगा, तो आप भी लगाइए और खूबसूरत हो जाइए। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब तक परचेज करो तो साथ तक डी स्किन जो फेस वॉश भी परचेज करो आए। डी स्किन का जो फेस वॉश है ना उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताते चले कि डी स्किन का जो फेस वॉश है ये आपकी स्किन के ऊपर किस तरह से काम करता है, क्योंकि कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि हम अपने चेहरे का ख्याल तो रख रहे होते हैं लेकिन हमें इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि भाई हमारे चेहरे पर कौन सा सोप सही रहेगा, कौन सा फेस वॉश सही रहेगा। या फिर ऐसा वाला सीन है कि हम सोचते हैं कि भाई हमारे पास कोई फेस वॉश होना चाहिए, अच्छा सा फेस वॉश जो कि पोर्टेबल होता है। जाहिर सी बात है आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप उसे बस कैरी करते हैं और ले जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई अच्छा सा फेस वॉश होना चाहिए जो अफोर्डेबल भी होना चाहिए और आपकी स्किन के ऊपर सूट भी करे, तो आपके लिए डी स्किन फेस वॉश मौजूद है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार है जनाब। तो आप मर्द हजरात खवातीन सभी ट्राई कर सकते हैं। और डी स्किन फेस वॉश जो है ना इसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड किया गया है, और ये जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम है ना इसका जो एड होता है वो आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, आपके चेहरे को हाइड्रेट रखता है और आपकी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखता है। यानी कि अब तो खैर से सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में ऐसा होता है कि हमारी स्किन जो ना काफी रूखी सूखी सी हो जाती है, जब हम फेस वॉश करके आते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर जो ना बहुत सारी खुश्कियां जाती हैं, तो हम ये सोचते हैं कि भैया कौन सा अलग से मॉइस्चराइजर परचेज करना चाहिए, या फिर मॉइस्चराइजर अच्छे मिलना भी बहुत एक अच्छी सी बात होती है, ये मिल ही नहीं पाते हैं। तो अगर आप तरह तरह के प्रोडक्ट से बचना चाहते हैं, 2-3 प्रोडक्ट्स बस अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए जिसमें आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है। जैसे ही आप लगाते रहेंगे आपकी स्किन ग्लो करती रहेगी, हाइड्रेट रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी और आप हमेशा खूबसूरत हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट को यूज करते रहें तो भाई आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, आप प्रोडक्ट को यूज करना छोड़ देंगे तो आपके जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं ना वो भी आपसे कहीं रूठ जाएंगे, तो ऐसा इस मरतबा कोई सी नहीं होने वाला है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाकर आपने जो प्रोडक्ट्स लगाने के बाद जो रिजल्ट्स आपने हासिल कर लिए हैं ना वो हमेशा आके साथ ही रहने वाले हैं। तो जनाब लाजमी ट्राई करके देखिएगा और जरा अपनी खूबसूरती को पहचानिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल कीजिए। और लगाने के क्या तरीके कार है वो बिल्कुल आप लोगों को बताते हैं, लेकिन साथ साथ आप क्या करेंगे, आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल कराएंगे। और साथ साथ डायल करते रहिए 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 50-25-970 आई बो नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुड़ी 332-73-84-309 मुख्य त हाणे लॻंदो आहे त हीउ नंबर समोसा गॾो गॾु तव्हांखे बि यादि थी विया हूंदा, ईअं आहे न? सो नंबर से तव्हां बि राबितो कयो ऐं पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश खे अवेलेबल कराईंदा रहो। अच्छा, हा मां खां सवाल छा पुछा अॼु प्रोग्राम में सवाल बिल्कुल ॿुधाईंदासीं, पर जेके जेके सुहिणा माण्हू असांखे ॿुधनि पिया सभिनी खे चऊं था भली करी आया तव्हांजो मोहबतूं आहिनि बाबा, तव्हां प्रोग्राम में शामिल आहियो। ऐं सवाल पुछो आहे उहो कहिड़ो कलर आहे जेको असां खाईंदा आहियूं, हांजी वो कौन सा रंग है जो हम खाते हैं। यस, आपने रंग पहने तो हैं लेकिन एक रंग ऐसा है जो आप खाते भी हैं, तो मुझे जल्दी से बताइए और शामिल प्रोग्राम हो जाइए 881 पर और फेसबुक पर। बिल्कुल जी, आपके फेसबुक पर मुझे कमेंट्स मिलते जा रहे हैं, तो कमेंट्स की जानिब आते हैं, लेकिन आप

लोगों के लिए मेरे पास एक खूबसूरत सा गाना मौजूद है, खूबसूरत से लिसनर्स को डेडिकेट करने के लिए। तो चलिए जरा हम पहले ये थोड़ा सा गाना एंजॉय कर लेते हैं, और आप पोस्ट को लाइक और शेयर करना जारी रखिए। हाँ जी,

क्या बात है, ये गाना पता नहीं क्यों मेरा फेवरेट है। मतलब अच्छा लगता है। ऐसे के साथ साथ आप पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, मुझे बताएं कौन कौन हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से सुन रहे हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया नहीं बताएं तो। ओके जी, हमारी साथी हमारी प्यारी निदड़ी कहती है कि दिल जर्फ और चाय का कप हमेशा बड़ा होना चाहिए। अल्लाह हजार खान भाई कहते कि शो वीआईपी आपकी तरह, थैंक यू वेरी मच प्यारा भाई। अच्छा अलीशा लिखती है कि

अच्छा अलीशा ने लिखा है कि तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, तुम्हारे संग रातों में जाकर देखूं तुम्हें बस सोना नहीं है मुझे। और लिखती हैं कि उसको हक है वो मुझे प्यार करे या ना करे, अली नजो बाबा एड़ा हक नजो मानुन के आई यो आते तमाम डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो इस्तेमाल करना रहो। और इकबाल आशारी हमें सुन रहे हैं जी, बोलिए जो सोनो खाल आशारी से टॉपिक बाजी। ओके और मुन्नवर अली हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं, आप बताएं कैसे हैं। चाचा खालिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा सिडो, हाउ आर यू। आई एम गुड चाचा, आप बताएं कैसे हैं। रमजान भाई कहते हैं सलाम बहन, आप कैसी हो। लिंक आपको शेयर करती है जी, वो गाना क्या मतलब प्ले करना है, ये तो आपने टिकटॉक का कोई छोटा सा वीडियो शेयर कर दिया है तो ये तो नहीं हो सकता शामले प्रोग्राम। और यार परदेसी भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून। तारिक भाई कहते हैं कि सज्जाद अली रुस्तमानी है, अच्छे कस्टमर है, इनका सॉन्ग चलाएं। ओके जी बिल्कुल भाई, आपके लिए सज्जाद अली रुस्तमानी के लिए बिल्कुल गाना लगा देंगे। और आप हमारे साथ मौजूद है तारिक भाई, आपको वेलकम हो गया। रमजान भाई कहते हैं बहन जी जी माशाल्लाह, रमजान भाई बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और चाचा कहते हैं कि झंडो मरी वारा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वच्ची काडे हल्या वया, अल्लाह काडे हल्या वया एंड बाबा वाके चौथा। ये भाई पता कराना पड़ेगा हमें, हम देखते हैं जरा। और हमारे साथ है ये गुड आफ्टरनून, हेलो सिद्रा जी हाउ आर यू, योर शो इज वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची, हेलो वेलकम हो गया जी आपका भी। दर्दी दिल हमारे साथ है कहते हैं अस्सलाम वालेकुम गुड आफ्टरनून माय मोस्ट फेवरेट आरजे चंदा जानी, कैसी हो, वेलकम टू शो, आपको भी वेलकम कहते हैं स्वीटा।

मेरा कंगना कंगना और मकड़ा मकड़ा याद आ गया. चलिए आप ऐसा कीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए. और जो नंबर्स आपको बता रही हूँ उनके ऊपर राबता करते रहिए. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि मेडिकेटेड फार्मूलो आहे बाबा, तमाम सब लगाए सको था, चाहे तमाम स्किन सेंसिटिव आहे, ड्राई आहे, ऑयली आहे, नॉर्मल आहे या वाली कॉम्बिनेशन टाइप आहे, हर स्किन जी मथा तमाम ट्राई करे सको था डी स्किन ब्यूटी क्रीम छो त नालो ही काफी आ सोना बाबू. आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे डब्बे जी मथा डॉक्टर माई जो फोटो अथव इहा गाल भी याद रखजो. आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे कारण अगर तव्हां परचेज करण वञो था त दुकानदार खे ज़रा इहो चओ त बाबा असां खबर आहे त असां कहिड़ो प्रोडक्ट वठण आया आहियूं. आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको आहे तव्हां नालो वठी करे तलब कयो ऐं इहो ॾिसी करे तलब कयो त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे डब्बे जे मथां डॉक्टर माई जो फोटो आहे. जेके माण्हू वीचारा पढ़ियल न आहिनि, जिन खे न हूंदी आहे ख़बर त बाबा नालो छा आहे, त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा निशानी जेका न यादि करे तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे वठी सघो था. ऐं उन खां अलावा बाक़ी जेके पढ़ियल आहिनि उहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो नालो ॾिसी करे वठी अचनि था. सो तव्हां सभु वठो ऐं तव्हां सभु सुणा थियो. ऐं गानो आहे मेरा बाबू छेल छवेला मैं तो नचूंगी.

लाइक और शेयर करते रहिए। तारिक भाई कहते हैं कि ये सारे जनरल स्टोर गरीबाबाद सखर में है। ओके जी, जितने भी गरीबाबाद सखर वाले लोग सुन रहे हैं तो वो वहीं से जाकर परचेज कर आएंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को। और जैन अली लिखते हैं कि सुनो जाना, आप वो हैं जिसे देखकर मेरे दिल की खाली टहनी पर फूल गुलाब के खिल जाते हैं, जिसे देखकर मुझे अपनी मर्जी के सारे मौसम मिल जाते हैं, और खामोशियों की जुबान समझ मेरा हाल क्या है मैं बयां करूं। अच्छा, मेरा हाल क्या मैं बयां करूं, क्या बात है जी, क्या बात है। और इकबाल भाई, आपने टॉपिक का जवाब दे दिया है, बढ़िया हो गया ये तो। अल्ताफ अली गादी बलूच, आप कराची से मैं सुन रही हैं, निगत नाज का गाना सुनना चाहते, लाजमी सुनाएंगे जी। बहुत शुक्रिया आपको, वेलकम हो गया। मुगल उमरानी हमारे साथ है, वेलकम हो गया जी भाई का। और अबासी हमारे साथ है, अबासी भाई कहते हैं फॉर यू सिद्रा। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपको वेलकम करते हैं। और रमजान भाई लिखते हैं कि तू महकता है मेरे दिल में गुलाब की तरह, तुझे पढ़ रखा है मैंने किताब की तरह, मेरे सवालों पर ये तेरी आंख के इशारे, सिद्रा बहन के नाम है कुछ कम नहीं किसी जवाब की तरह। वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, एडी ओडी शायरी मोकली दा ठा करे मुखे डेडिकेट करे सरिंदा। अच्छा है, बहुत अच्छा है।

अच्छा एडी मलानो हमारे साथ खैर पर मेरे से अलादिनो मलानो और ममताज हुसैन फलपोटो वेरी नाइस योर प्रोग्राम थैंक यू वेरी मच जी आप सब भाइयों को वेलकम हो गया किशोर भाई कहते हैं कि डोंट गो एनीवेयर किशोर इज देयर जय बुधायो कहते टॉपिक कहो आए बाबा टॉपिक तो बुद्धो हों बाबा हाँ अब्दुल करीम गांगरो हमें सुन रहे हैं वालेकुम असलम चाचो कहते हैं कि फहीम शेख झंडो मरी वारन के डी स्किन ब्यूटी क्रीम डियण वो आज चले ये तो अच्छा हो गया और किशोर भाई कहते हैं कि हाँ हाँ जवाब आए पर वायदों का लास्ट में जवाब नहीं पोविंद ये है भाई मैं पता नहीं क्यों टॉपिक का जो जवाब होता है ना वो देकर नहीं जाती हूँ ये मेरे अंदर पता नहीं क्यों बुरी आदत है चले हाँ मैं कोशिश करूंगी कि जवाब बता कर जाऊं निधि कहती है कि मैं अच्छा समझ गई मैं निजाम भट्टी कादरी भाई वालेकुम अस्सलाम अटियारी से आप हमारे साथ मौजूद है भाई को वेलकम कहते हैं कहते कैसी हो सिद्रा मैं बहुत अच्छी आप बताएं दर्दे दिल कहती है अच्छा हम लोग हाँ जी बिल्कुल आप ही लोगों की बात हो रही है और कौन है भला मेरी जिंदगी में चले आप गाना एंजॉय कीजिए टाइम हुआ है यहाँ पे न्यूज ब्रेक और उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं तो आपने कहीं नहीं जाना हमारे साथ मौजूद रहिएगा सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरी पूरी तीन बजे तक मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए

0: अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
1: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
0: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
1: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
2: सुपर वाइट।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

फार्मूलो हूंदो तब त बाबा लई ही लई आहे तव्हांजे, छो त मेडिकेटेड फार्मूला अगरि मार्केट में तव्हां ॾिसंदा त सफ़ा कम तव्हांखे मिलंदा. ऐं हिते डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे बाबा मेडिकेटेड फार्मूलो आहे. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा बि ख़ासि ॻाल्हि आहे त हिन जे अंदरि उहे सभु चीज़ूं एड कयूं वयूं आहिनि जेके तव्हांजी स्किन जे लाइ फ़ाइदो ई फ़ाइदो आहे. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे न टू इन वन फार्मूलो आहे, यानी कि जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे त तव्हांखे फेशियल वारो निखार मिलंदो. सो उहे तमामु माण्हू जेकी बि असांजो प्रोग्राम ॿुधनि पिया, चाहे तव्हां मर्द हज़रात आहियो चाहे तव्हां ख़वातीन आहियो, तव्हां सभु माण्हू डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ करे सघो था. ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहे, हर मौसम में लॻाए सघिजे थो. ऐं उन खां अलावा तव्हांजी स्किन ते जेको आहे न ऑयली ऑयली न फील थींदो, तव्हांखे महसूसु थींदो त बाबा तव्हां वाक़ई को सुठो को प्रीमियम प्रोडक्ट जेको आहे उहो लॻाए रहिया आहियो. ऐं वरी तव्हां इहो ॿुधी करे सोचींदा हूंदा त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम किथे महांगी त कोन्हे का, त बिल्कुलु बि महांगी कोन्हे का, सफ़ा सुटेबल ऐं मुनासिब क़ीमतुनि में तव्हांखे मिली रही आहे. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ ॿ रातिनि में भलो सफ़ा भलो भलो रिज़ल्ट मिली वेंदो. अगरि तव्हां बि चाहियो त बाबा असांखे ॿिनि रातिनि में रिज़ल्ट मिली वञे, अर्जेंट तव्हां काॾे वञो था या तव्हांजी शादी थियण वारी आहे, तव्हां चाहियो था त को सुठो प्रोडक्ट असां लॻायूं जीअं शादी में असांजी स्किन जेका आहे न सभिनी खां भली नज़र अचे, त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ करे पंहिंजी स्किन खे प्रोटेक्ट बि करे सघो था ऐं पंहिंजी स्किन जी हिफ़ाज़त बि करे सघो था ऐं पंहिंजी स्किन खे ख़ूबसूरत बि बणाए सघो था. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ़ ख़वातीन जे लाइ न आहे बल्कि तव्हां मर्दनि जे लाइ बि आहे. तव्हां मर्द बि लॻायो, तव्हां ख़वातीन बि लॻायो, तव्हां सभु लॻायो ऐं तव्हां सभु सुहिणा थी वञो. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि जेको आहे वाइटमिनी बीट्स आहिनि माइक्रो बीट्स आहिनि, त इहे जेके आहे न वाइटमिनी बीट्स ऐं माइक्रो बीट्स इहे तव्हांजे चहिरे ते जेको आहे न फेशियल वारो निखार ॾींदा आहिनि. छो त वाइटमिनी बीट्स ऐं माइक्रो बीट्स जेके आहिनि उहे वॾनि महांगा महांगा जेके फेशियल हूंदा आहिनि जेके वीहनि वीहनि हज़ारनि में मायूं कराईंदियूं आहिनि, उन्हनि फेशियल जे अंदरि इहे चीज़ूं एड थियल हूंदियूं आहिनि. सो बाबा हाणे तव्हांखे जेको भलो प्रोडक्ट मिली रहियो आहे, एतिरो भलो प्रोडक्ट मिली रहियो आहे ऐं मुनासिब पैसनि में मिली रहियो आहे, तव्हांजो टाइम बि बची वेंदो ऐं तव्हां बसि राति जो सुम्हण खां पहिरीं लॻाए छॾींदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे त पोइ वाह वाह थी वेंदी. तव्हां लॻायो, ट्राए करे ॾिसो ऐं लॻाइण जा तरीक़ेकार छा आहिनि बिल्कुलु तव्हांखे ॿुधाईंदासीं. छो त कुझु माण्हू वरी एतिरा मासूम हूंदा आहिनि, हिनखे लॻाइण जा तरीक़ेकार बि ख़बर न आहिनि हूंदा. त अगरि तव्हांखे तरीक़ेकार न आहिनि ख़बर त तव्हां छा कंदा राति जे टाइम तव्हांखे जंहिं महिल लॻे त हाणे असां बसि सुम्हंदासीं, हाणे असांखे को बि कमु कोन्हे को. जंहिं महिल तव्हां पंहिंजे लाइ सोचो त बसि हाणे असां सिर्फ़ु सुम्हणो आहे कोई बि कमु न बचो आहे, त तव्हां सभ खां पहिरीं पंहिंजो फेस वॉश करे ईंदा. अच्छे तरीक़े सां अपना फेस वॉश कीजिएगा डी स्किन फेस वॉश से. और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये क्या ही कमाल का है भाई, इतना रिच फार्मूला है ना ये कि जब आप लगाएंगे तो आप कहेंगे कि आए हाय मजो ही अची वो. ये तुम्हारी स्किन के अंदर ताई वेंदो आहे, तुम्हारी स्किन के डीपली क्लीन कंदो आहे, मॉइस्चराइज कंदो आहे, तुम्हारी स्किन के हाइड्रेट भी रखंदो आहे. खोड़ मानो जी आदत होंदी आहे तो वो पानी जेको आहे सफा घट यूज कंदा आहिनि पंहिंजे सजे डींहं में. अगर तव्हां पानी घट यूज कयो था त इन जो सिधो इफेक्ट तव्हांजी स्किन जे मथां अची वेंदो आहे. अगर तव्हां पंहिंजी स्किन खे ॾिसंदा न जेके माण्हू पाणी घटि यूस कंदा आहिनि त पंहिंजी स्किन खे जॾहिं तव्हां ॾिसंदा त तव्हांजी स्किन जेका आहे न काफ़ी ऐं रुखी सुखी लॻंदी आहे, मुरझायल लॻंदी आहे ऐं ॼण ईअं लॻंदा तव्हां बीमार बीमार आहियो. सो तव्हां हिकु त पाणी जो यूज़ जेको आहे प्रॉपर रखो, सही रखो, पाणी जो इस्तेमालु भलो कयो ऐं ॿियो त तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश जेको आहे न उहो पंहिंजी स्किन ते लॻायो. फेस वॉश कयो डी स्किन जे फेस वॉश सां, उन सां तव्हांजी स्किन हाइड्रेट बि रहंदी, मॉइस्चराइज बि रहंदी ऐं तव्हांखे निखार बि मिलंदो रहंदो. सो राति जे टाइम ते पंहिंजो फेस वॉश कयो, अच्छे तरीक़े सां चहिरे खे सुखायो, उन खां पोइ तव्हां डी स्किन क्रीम के पांजे चेहरे ते अप्लाई करे छड़ियो. ऐं डी स्किन जो जेको फेस वॉश आहे न उहो तव्हांजे चेहरे ते ॾाढो फ़ाइदो छॾींदो. ऐं वरी जॾहिं तव्हां उबतो डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे लॻाईंदा पोइ त साईं वाह वाह थी वेंदी. ॿ रातियूं तव्हां इहो फार्मूलो ट्राए करे ॾिसो, तव्हांखे यकीन इलाही सुठा रिज़ल्ट मिलंदा ऐं तव्हां मर्द हज़रात ख़वातीन हर कोई लॻाए सघे थो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते बिल्कुलु अवेलेबल कराए छॾी आहे. हा ॿी ॻाल्हि त विसरी वई मूंखां, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां अप्लाई कयो न त इन चीज़ खां थोरो गुरेज़ कयो त बाबा तव्हांखे मसाज जीअं ईअं मसाज न करिणो आहे चेहरे ते क्रीम लॻाए करे. कुझु माण्हुनि जी आदत हूंदी आहे या वरी तव्हां इहो ॿुधो था त बाबा हिन में फेशियल जूं चीज़ूं अहिड़ी थियल आहिनि त तव्हां वरी ईअं न त वियो साईं डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे फेशियल करणु. तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे नाइट क्रीम जी तरह ही लॻाईंदा. ही बज़ाहिर त नाइट क्रीम आहे पर ही टू इन वन फार्मूलो आहे. तव्हां नाइट क्रीम जीअं इस्तेमालु कंदा, नाइट क्रीम जीअं आहे आसान तव्हांजी ज़िंदगी खे बणाए थी, पर हिन जे अंदरि जेके रिज़ल्ट तव्हांखे मिलंदा उहे फेशियल वारा मिलंदा. त तव्हां लॻायो क्रीम खे त आराम सां, प्यार सां, सुकून सां लॻायो ऐं पोइ तव्हां ॾिसंदा त तव्हांखे अहिड़ो भलो रिज़ल्ट मिली रहियो आहे. तव्हां सभु लॻायो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो, पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो. ॾिसो असांजी टीम केतिरी महिनत करे रही आहे, तव्हांजो बि फ़र्ज़ु बणिजे थो त तव्हां सुठा प्रोडक्ट लॻायो. इहे जेके अजीब तरह जा प्रोडक्ट तव्हां लॻायो था, हिननि खे बाबा गुड बाए कयो, टाटा कयो. ऐं तव्हां वटि हाणे हिकिड़ो अहिड़ो प्रोडक्ट मौजूदु आहे जेको तव्हांखे मुनासिब क़ीमतुनि में बि मिली रहियो आहे ऐं तव्हांजी स्किन जे लाइ मुनासिब बि आहे. सो तव्हांखे नंबर से मथां राबितो करिणो आहे. नंबर आहे जनाब 03 12
5025906907 बुड़ी 312 हां 5025 970 आई योर नंबर आहे 0332738 4309 बुड़ी 332 7384 309 ही बई नंबर तमान जे लाई आहिन तमान नंबर से राबतो करे सको था तमान कॉल कयो या वरी तमान मैसेज कयो आई भाई साहब के बुधायो त बाबा तमान किथा बुदो था प्रोग्राम किथे किथे दी स्किन ब्यूटी क्रीम की अवेलेबल कराण खपे न हु अवेलेबल कराए सडिंदा सो तमान अवेलेबल करायो तसली सा सुकून सा वेई पांजे चेहरे ते दी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कयो आई पो दिसो त तमान के केडा भला रिजल्ट मिलंदा रहन सो दी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यो कमाल आहे जेको तमा इस्तेमाल कंदा त तमा के मिलंदो जाहिर सी गाला बिना इस्तेमाल जे किया मिलंदो भला बुदायो मुगे इस्तेमाल करियो और खूबसूरत हो जाए ऐसे के साथ साथ हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है बिल्कुल जी आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं कि कौन सा रंग है जो आप खाते हैं हम खाते हैं माँ भी खाई दिया ताँ भी खाई दाओ सब खाई दाए तो आप मुझे बताएं जल्दी से कौन सा रंग है जो हम खाते हैं और तव मुख्य ज्वाइन करना बाबा 888 ते आई फेसबुक ते अच्छा त जेके भी मानु मुख्य बुदन था फेसबुक जे थ्रू तव पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना कयो जे इलाही सारा मानु असने प्रोग्राम में शामिल थी सके इलाही सारे मानन के असा बुधाए सगु त बाबा तव भी ट्राई करे सगो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम के आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव जे लाई भी फायदेमंद साबित थी सके थे सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए

यहाँ पर आपके मैसेजेस की जाने भी आ जाते हैं, आपके फीडबैक्स हैं जो कि पैनल पर भी मुझे मिल चुके हैं, आपके कमेंट्स भी हैं, तो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास आप लोगों को सुनाने के लिए एक बड़ा मस्त सा गाना है, तो आइए जरा ये मस्त सा गाना सुनते हैं और आप हमारे साथ साथ मौजूद हैं, मुझे बताइए और आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

वो क्या है कि ओरिजिनल गाना जरा जोर से आ रहा है और हमारे साथ मौजूद ही हमारी फजली कहती है अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे शहजादी सिस्टर सिद्रा मुस्कान कैसी हो डियर स्वीटी मैं ठीक हूँ बहुत खूबसूरत आप बताएं कैसी हो और ये हमारे साथ कहती है कि सलाम टू ऑल स्वीट सिस्टर्स को टॉपिक का जवाब दिया है फजली ने ओके ओके आजी ओके ओके और हमारे साथ है जी ये बशीराबाद मोरी से फैसल अहमदानी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदी केड़ा हाल है तुम्हारा शो तुम्हारा लाजवाब है थैंक यू सो मच प्यारा भा

हाँ जी, तव्हां बि सुहिणा लॻी सघो था, पर हिकिड़ी शर्त आहे त तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करणो पवंदो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो ऐं मूंखे ॿुधायो त तव्हां बि इस्तेमालु कई आहे, तव्हां वाॻे सुहिणा थी विया. डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी जेका ख़ासि ॻाल्हि आहे त बाबा इहा त तव्हांजी स्किन जे लाइ ॾाढो फ़ाइदेमंद आहे ऐं तव्हांजी स्किन ते मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, तव्हांजी स्किन ते सफ़ा सूट कंदो, हर माण्हू लॻाए सघे थो. तव्हां बि लॻायो ऐं तव्हां बि लॻायो ऐं तव्हां बि लॻायो. अच्छा, ये हमारे सादे सलाम सिद्धो जी, उस्ताद जी, मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जब मैं घर से निकलूं तो वर्दी पहन के वापस आऊं, क्योंकि ग्रेजुएशन में बस 2 साल रह गए हैं. मेरे घर वाले डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं मुझे, मैं घर वालों को छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि हालात कुछ ऐसे लेकिन अच्छा ऐसा वाला सीन है, आपने कुछ सही है. जिम्मेदारियाँ तो इंसान के ऊपर होती हैं, हर इंसान के ऊपर होते हैं ये चीज़ है, लेकिन थोड़ा सब्र से काम ले, सुकून से काम ले. पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, उसके बाद घर वालों को बोलें कि हाँ भाई हाँ तुम उम्मीद उमेद रखी सको था तो पहले तो पढ़ा प्यो नहीं. पढ़ाई के दौरान कोई जनाब डिस्टर्ब ना करे, तो अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करें, अच्छे से आप अपनी जो भी टेस्ट देना चाहते हैं उसमें आप अच्छे नंबर्स लें और अल्लाह पाक आप जो भी चाहते हैं ना वो आपको दे देंगे. बस उम्मीद होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए और तैयारी अच्छी होनी चाहिए. अच्छा सागर न्यास जानू भाई, आप मैसेज कर रहे, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस तरह का मैसेज क्यों कर रहे हैं. क्या हो गया, थोड़ा सड़क गए. सुल्तानपुर खां अब्दुल गनी जूनी जो सलाम सिद्रा मुस्कान साहिबा, शो लाजवाब है. जवाब आपने दिया है बिल्कुल जी, क्या बात है, जबरदस्त हो गया. चाचा तव्हां बि गाने जी फरमाइश कई आहे, ओके तव्हांजो गानो बि हलाईंदासीं. अच्छा गोट मोहम्मद तैयब थेबू खां हबीबुल्ला थेबू हमारे साथ यारे सिद्रा मुस्कान, शो तव्हांजो लाजवाब आहे. सलाम तव्हांखे, वालेकुम असलाम तव्हांखे.

ओके जी, मायरा हमारा शो सुन रही है। मायरा वालेकुम अस्सलाम, आप भी डीज़ के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रही है, क्या बात है जी। और जवेरिया हमारे साथ मौजूद है, हमारी प्यारी जवेरिया हमें लाड़काना से सुनती है, और जवेरिया भी डीज़ के ब्यूटी क्रीम का यूज कर रही है, ये तो बढ़िया हो गया। और दिलरुबा, क्या बात है हमारी प्यारी दिलरुबा, नालो किनो भलो तसे। मैं कुछ कह नहीं सकता। दिलरुबा भी सने प्रोग्राम उदे पई। थैंक यू सो मच दिलरुबा भी बाबा। वेंदी डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करना लाजमी वंजो दिलरुबा। आई वेठी जो आबिद भाई तमां के डी स्किन ब्यूटी क्रीम डाई छड़ी दो। उन के अलावा जेको आसो तमां से सगर मौजूद आयो, आई फेसबुक जी तरफ अचूं था त चाचो चए थो काफी रंग खाते हैं जिसमें, अच्छा ये तो नहीं है, थोड़ा और सोच लीजिए। और इनके अलावा हाँ भाई देख ले, लोग तारिक भाई से क्या क्या करवा रहे हैं। चलें कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। तारिक भाई ने ऐसा बोला होगा। दर्दे दिल कहती है कि वाओ अमेजिंग शो, थैंक यू वेरी मच प्यारी। और किशोर भाई कहते हैं कि अदा मेहरबानी करे तू, हाजुर हाजुर या गाल सफा मां पांचे पल्लू सा बदी छड़िया है, तुम टेंशन न वठ जो, बस तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठ जो सही है।

अच्छा फलक अली हमारे साथ है, लिखा है तन्हाई भी अजीब सजा है, ना कोई अपना ना किसी से गिला है, लोगों के हुजूम में भी तन्हा हूँ, शायद इसीलिए खुद से भी खफा हूँ, खामोश रात तन्हा दिल और तेरी याद बस इतना ही काफी है उदास होने के लिए, हमने तन्हाई में खुद को बहुत गरीब पाया, लोग साथ थे मगर कोई अपना ना था, कभी कभी खामोशी चीख बन जाती है जब दिल में बहुत कुछ हो मगर सुनने वाला कोई ना हो, तन्हा बैठा हूँ तो याद आता है कितने लोग थे जो कभी मेरे थे। जी जी भाई आप टेंशन ना लें, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम ले। तू माइडी टू आया। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं बुधारत से तो तुम ते कहो खबर तो पवे। आप भी बिरोही हमें सुन रहे हैं कहते इट्स सो गुड शो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी मैं लेकर आया हूँ कल, क्या बात है आबिद भाई, तमाम डी स्किन ब्यूटी क्रीम अठी आयो वाह वाह थी वही वाह वाह, और कहते डी स्किन ब्यूटी क्रीम कल ली है मैंने, जी जी अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा कर लिया। और जीशान हमें सुन रहे हैं, जीशान गोठ थारो थारो थरीचा खान, जबरदस्त प्रोग्राम आए, थैंक यू भा। चाचो चे तो रात अच्छा तमाम शायद ही कहीं गोठ जो लाए किथां जो नालो लिखो है, चौथा एक दोस्त के शॉपकीपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बजाय धोखे से बी क्रीम थमाए छी, स्ट्रेंज बट ट्रू आई ली, इसके ऊपर तो ब्रेकिंग न्यूज बननी चाहिए। इस तरह के धोखे से बचिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाम लेकर तलब कीजिए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की डब्बी के ऊपर माई का फोटो डॉक्टर माई का फोटो देकर ही परचेज करें, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी या खास गाल आए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो डब्बी जी मथा डॉक्टर माई जो फोटो आए, तमाम ये सब निशानियों डिसी करें डी स्किन ब्यूटी क्रीम सही वारी परचेज करें, जो बाबा धोखन का बचो नकालों से होशियार रहे।

अच्छा कामरान खान हमें सुन रहे हैं मोरो से और आपके अरमान जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो भाई साहब जो लोग हमें मोरो से सुन रहे हैं वो अरमान जनरल स्टोर से जाकर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। और वफा शहजादो मक्सी हमें सुन रही है लाड़काना से, प्रोग्राम जबरदस्त, थैंक यू। अली रजा लगारी भाई भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया भाई को वेलकम करते हैं। यहाँ पर टाइम हुआ है जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, टाइम पर ब्रेक लेते हैं उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाई स्टेशन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम। लगाइए और आप भी सुंदर हो जाइए।

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: अरे नर खुश्क और बेरोनों की स्किन और इन्हें जलाए छा डैमेज और डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेहमे आहिन चावरन जो खूबियों और कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के ब्लॉक करे और चावरन जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस और झुरन के घट कर और रिंकल्स के घट करे सिर्फ 3 दिन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम और ब्राइट उन संगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सर कॉस्मेटिक्स.
3: लाड़काने वसल लाए खुशखबरी डॉक्टर अजीत कुमार एमबीबीएस एफसीबीएस डर्मेटोलॉजी चमड़ी जे बीमारियन जो माहिर हिते मोहिड़ा डडर मल्लो पुरानी खारिज वार चरो पुरानो फट चित्री लैशमेनियासिस चेहरे जा दाग बग नहन जो खराब छन वारन जा मसला एलर्जी ए औरतन जे चेहरे ते गैर जरूरी वारन जो इलाज बेहतरीन नमूने कयो वजे थो. डॉक्टर अजीत कुमार चमड़ी जे बीमारियन जो माहिर एड्रेस अली हॉस्पिटल बगड़ रोड लाड़काणो टाइम रोजानो शाम जो 4:00 बजे का रात जो 8:00 बजे तक ऐ आचर दे क्लिनिक बंद.

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब सखरण मोरो मिरपुर खास मटियारी सखरण मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट स्टेशन जी इज कम ब्यूटी शो।

तेरी शाजिया मारवी की आवाज में मैंने गाना लगा लिया। ये सिंगर मैंने आज अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देखी और सुनी। जी जी, आप लोगों की मेहरबानियां है। बहुत अच्छा गाना, और गाना एंजॉय कर रहे हैं साथ साथ, जिस भाई ने डेडिकेट किया था तो एंजॉय कीजिए। कमेंट आएगा तो हम उनका नाम भी ले लेंगे, लेकिन मैंने गाना लगा लिया है। और अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं तो मुझे बताएं, अब आपकी बारी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए ना। अच्छा था सोचो, इतरो सोचो, अच्छा बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है वनो झट सा वठी चो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना शुरू करो।

क्या बात है जी, क्या बात है, बढ़िया हो गया ये तो, बहुत अच्छा गाना है। और साथ साथ आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है जनाब, आप लोगों की मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में और आप साथ साथ अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराते जा रहे हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की खूबसूरती के ऊपर इस तरह से वर्क कर रही है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को एहसास हो जाएगा कि वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है, तो डी स्किन का फेस वॉश भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। वैसे डी स्किन का फेस वॉश तो सारे लोग ही लगा सकते हैं, यानी कि इसमें ऐसा सीन नहीं कि भाई आप सिर्फ टीनेजर्स के लिए है या एजेड लोगों के लिए है। फेस वॉश की जब बात आती है तो उसे आप बच्चे भी लगा सकते हैं, जो लड़कियां होती हैं, छोटी लड़कियां, वो भी लगा सकती हैं, मर्द हजरात सब कोई लगा सकते हैं। तो डी स्किन का फेस वॉश आप सब लोग अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लीजिए और डी स्किन फेस वॉश से आप अपना फेस वॉश करते रहिए।

जी क्या बात है, बहुत अच्छा खूबसूरत सा गाना जो कि हमने एंजॉय किया और साथ साथ आप सुन रहे हैं वाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं। खूबसूरती की बात हो जनाब, स्किन केयर को नजरअंदाज कर दिया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है बाबू भाई। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले हैं तो जल्दी से लगाइए, और आजकल हर कोई चाहता ना कि भाई उसके लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बताएं जो कि भाई ऐसा हो कि लगाने के बाद आके चेहरे की स्किन जो है वो खूबसूरत भी होती रहे, आके चेहरे पर प्रोटेक्शन भी रहे, और आके चेहरे पर जो है ना कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आए। ये चीज बहुत अच्छी, आप ऐसा ही सोचा करें, क्योंकि जब आप मार्केट जाते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आप जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो क्यों परचेज कर रहे हैं। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जानब आते हैं, डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश की जानब आते हैं, तो ये बेहतरीन बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो तो इसका जो फायदा आप लोगों को मिलने वाला है वो ये कि भाई आप लोगों के चेहरे पर खूबसूरती भी आती रहेगी, खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहेगी, और कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि ये जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज करेंगे ना तो आपको मिलेगा ऐसा निखार, ऐसी खूबसूरती जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा आरबुटीन है, कोचिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें ऐड की गई हैं जनाब जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। डी स्किन ब्यूटी क्रीम को ये तमाम चीजें जो है ना वो बहुत खास बना देती हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी जिंदगी में जब शामिल होगी तो आपको भी खास बना देगी, क्योंकि आपके चेहरे पर इतना कमाल का हुसन आ चुका होगा। तो ट्राई करके देखिए और हमेशा के लिए हसीन हो जाइए। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपने फेस वॉश जो है ना वो लाजमी परचेज करना है। अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है लेकिन फेस वॉश नहीं मिल रहा, तो दोनों चीजें अगर आप अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जो नंबर्स आपको बता रही हूँ प्रोग्राम के अंदर उनके ऊपर रब्ता करना मत भूलिएगा। रब्ता कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और इजिली वहां से जाकर परचेज करते रहिए। तो वैसे तो हर जगह अवेलेबल हो चुके हैं, लेकिन फेस वॉश की थोड़ी सी ये बात है कि वो थोड़ा अभी बना है ना, तो वो थोड़ा मुझे लगता है कि कहाँ कहाँ पर कहीं कहीं पर अवेलेबल नहीं हुआ होगा। तो आप नंबर्स के ऊपर रब्ता करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर फेस वॉश को भी अवेलेबल कराते रहिए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और साथ में डी स्किन का फेस वॉश लगाइए, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, ट्राई करके देखिए आपको मजे आ जाएंगे।

जो खूबसूरत गाना हमने लगाया है ये हमारे प्यारे लुबी को डेडिकेट जाता है और गाना एंजॉय करेंगे यहाँ पर हमारे साथ है जी हमारी प्यारी लुबी। कहती है अस्सलाम वालेकुम सिरू जानी, क्या हाल है? मैं भी आपके साथ साथ हूँ, बहुत टाइम बाद आज फिर से शामिल हूँ और आपके प्यारे शो में। मैंने बहुत मिस किया था आपको और आपके शो को भी। थैंक यू सो मच जाना, गाना एंजॉय करें।

हा भाई ये नकंद न कयो नकंद न कयो भला बार थियो इंडी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो अच्छा अब्दुल्ला महर भाई क्या कहते हैं कि मीरपुर खास से आपने मुझे ज्वाइन किया है कहते हैं कि आज हमारे पास बैलेंस नहीं था लोन उठाकर आपके प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जियो लोन हाँ जी अच्छा किया आपने बस ये आपकी मौजूदगियाँ जो थी ना ये हमें आपका गुलाम बना देती है क्योंकि जब आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं बताते हैं कि हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं और आपका होना प्रोग्राम में चार चांद लगा देता है तो सारे लोग अगर प्रोग्राम सुनते हैं तो शामिल प्रोग्राम हो जाया करें और अब्दुल्ला भाई की तो क्या ही बात है बैलेंस नहीं था तो लोन उठा के भी मुझे मैसेज कर दिया जियो बाबा तमाम भी जियो और लुबी तमाम आंसर डिनो आहे ओके हो गया जी और किशोर भाई हमारे साथ थे थांकू थांकू दर्दी दिल कहती है फॉर यू कोई आपसे इसलिए मोहब्बत नहीं करता कि आप बहुत खूबसूरत हैं और ना ही इसलिए करता है कि आप वफादार हैं बल्कि वो आपसे इसलिए मोहब्बत करता है कि आप उनकी निस्फे रूह और आधा दिमाग और पूरा दिल होते हैं क्या बात है जी क्या बात है ये वैसे सही बात है वो मुझे वैसे गुरु जी की बात याद आ गई कोई आपसे प्यार क्यों करेगा क्या है आप में आपसे कोई प्यार क्यों करेगा ये सोचने वाली बात है और आप जरा सोचिएगा और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा स्मार्टो गोपाल कहते हैं हाय अस्सलाम वालेकुम कैसे हो आई एम लिसनिंग योर शो इन कंपैरिसन वेरी वेरी नाइस वॉइस प्लीज प्ले सॉन्ग मंजूर सखरानी डिसांती टाइम बची तो तवांजला हलाए बैठूं था और नजर मोहम्मद भट्टी भाइयों में सुन रहे कहते कोई जन्नत का तलबगार है तो कोई गम से परेशान है जरूरत सजदे करवाती है जनाब इबादत कौन करता है हाय अब मैं क्या ही बोलूं इसके ऊपर चलिए आप हमें मटियारी से ज्वाइन कर चुके हैं बहुत शुक्रिया प्यारे भाई कहते हैं कि आज तो शाजिया मारवी का गाना चलाएं दुश्मनी है क्या अरे भाई नहीं किसी से दुश्मनी नहीं है और मैंने वो सिंगर सुनी आज पहली मर्तबा तो बता दिया करें नए नए सिंगर्स के बारे में ताकि हम प्रोग्राम में लगा सके अच्छा गाना था वैसे उनका

मुझे बिल्कुल मुझे पता नहीं है कि मैं ऐसी क्यों हूँ मैं ऐसा क्यों हूँ अच्छा अली रज़ा लगारी भाई तवां जो मोहब्बत में तवां प्रोग्राम के पसंद कयो पया ऐसन कहते हैं कि सोमा तो स्पीड पेंटी ओ सोना घट कर सठ कर लय कुछ घट कर मथे में सूर पवंदी या गाल बिल्कुल तवां सही चई आए ऐसन मुखे लगे पे तवां निगत जो गानो बुधन चाहियो था पर अजो निगत के थोड़ो मोकल ते मोकलियो आए सही आ निगत वही आए दी स्किन ब्यूटी क्रीम वठण समझो था जॾहिं वठी ईंदी न त पोइ सुभाणे निगत खे हलाईंदासीं बाबा धमाकनि सां दौलत धमामनि सां और अबासी भाई कहते हैं कि फॉर यू मुस्कान ओके अबासी भाई आप बस समझ गए इतना मेरे लिए काफी है बहुत शुक्रिया आपका जी जी असां रोज़ कोन रुसंदा आहियूं असां भला ॿार आहियूं असां रुसंदा ई न आहियूं तव्हां ॾिठो आहे एतिरनि सालनि मां कंहिंखां रुठी हुजां कंहिंखां बि न रुसण जेको आहे न पसंदि ई न आहे असांखे और रशीद कोसो भाईअ में सुन रहे हैदराबाद से आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया जी और लुबी की पसंद का गाना था हां जी बिल्कुल और रशीद कोसो भाई तव्हांजो मोहब्बतूं आहिनि लुबी कहती है नाइस सॉन्ग शीला गुलका थैंक यू सो मच बहुत इंजॉय किया आई एम सो हैप्पी जी आप खुशी रहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप बताइए अर्जी भुट्टो में मिल रही है नहीं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अपने सब फ्रेंड्स को भी मशवरा दीजिए कि वो भी परचेज करें क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे भाई इजीली आप सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये खास क्वालिटी है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है तो आपके लिए ये भी कोई टेंशन की बात नहीं होगी कि भाई हमारी स्किन सेंसिटिव है हम कोई प्रोडक्ट नहीं लगा पाते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके सारे मसलों का हल है आप इस्तेमाल कीजिए और शोने शोने हो जाइए

के ते रसनी त वेठी भी हिक हुंदी आहे न अहिड़ी ॻाल्हि बि कोन्हे का अहिड़ी ॻाल्हि बि कोन्हे का तव्हां आयो न किशोर भाई कहते हैं कि अदा बैंक मां लोन खणी तुझे शादी में इंदस जरूर आई ली डाथो राखंदो मन मुझे मथा पर हिकड़ो कम कयो हाणे तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचो इन लाइ तव्हांखे लोन वठण जी ज़रूरत न पवंदी मुनासिब पैसनि में तव्हांखे मिली रही आहे अच्छा फहीम भाई हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम अदर मां भी अच्छी वयम लास्ट लिंक में अदा अखी हाने खुली आ इन करे गुड मॉर्निंग ओके जी तांके गुड मॉर्निंग में भलो गानो बुधरायो सी

सो गाना खत्म हो चुका है एंड नाउ मूविंग टू नेक्स्ट गाना जो कि मैंने आप लोगों को है सुनवाना और ये होगा जी शायद बबर की आवाज में गाना। इस गाने की मुझे चाची ने फरमाइश कर दी तो हम सुनेंगे।

वाह उस्ताद साईं उस्ताद अथव जियो करेसि असांजे वञण जो टाइम बि थी वियो आहे बिल्कुलु तव्हां खां मोकिल वठंदासीं सुमाटो कहते हैं कि आप तो यंग बच्चा हो आप ओल्ड सॉन्ग क्यों सिंगिंग करती हैं भई ओल्ड गाना भला लॻंदा आहिनि भला और उन खां अलावा दो चए थो बिल्कुलु रुसिया आहियो आउं फील कंदो आहियां न न अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे का तव्हां फील न कंदा कयो और कहते हाणे आउं रोआ पियो छो पिया रो बाबा रो न ख़ुशि थियो खिलो और दर्द दिलि कहती है कि मुझसे जुड़ा हर शख़्स बस अपनी ख़ुशी चाहता है मैं अगरि उदास बि हूं तो ये बस मेरा मसला है ओ या गाल थई फराज डेहरी भाई हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम उसामा और फराज की तरफ से जी वालेकुम अस्सलाम जी जी और हाशिर अजीम भाई हमारे साथ हैं बहुत शुक्रिया और हजार भाई जी जी तू मुझे आजमाने की कोशिश ना कर और यहाँ पर इजाज़त वरी तव्हां सां मिलूं था जी 5 बजे वारे प्रोग्राम में पंहिंजो ओ हीरो सरो ख़्याल रखंदा किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत कयूं था को फीडबैक रहिजी वियो आहे को गानड़ो शानड़ो रहिजी वियो आहे त बाबा माज़रत मोकिलाणी न आहे सलामत अलाह हाफ़िज़ बाय लव यू ऑल एंड

0: man. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White H Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye. Skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White H Beauty Soap se mile. Chamakta nikhar taazgi ke saath. White H Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: Arey na, khushk aur beerono ki skin, aur inhi jalai cha. Damage aur dull skin ki kayo, out. Par piyu kiye, to ke khape Super White Rice Collagen Beauty Cream. Jehe mein aahin, chaur anju khubiyo. Aur kojic acid formulation, jo jild ke restore kare, unhi ji nami ki block kare. Aur chaur anju khubiyo, jild ma fine lines aur jhuran ki ghat kar. Aur wrinkles ki ghat kare, sirf trim nihan mein. जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उनसा जरूरत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
3: सिंध के माथे का झूमर
4: DFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।
3: कोक स्टूडियो सीजन 14।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: कोक स्टूडियो सीजन 14

0: बताए केपी के जिला के डेरा इस्माइल खान में बीआर चार एलकार समेत पंज जना शहीद रिया खान पुलिस मूजिब भाया पुल वेझो हथियारबंद की गाड़ी से फायरिंग चार बीआर एलकार शहीद थे रोड से ट्रैफिक संभालींदड़ एलकार के भी शहीद किया पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर छोड़ो
1: लगाने के बाद किसी परफ्यूम की जरूरत नहीं ब्लैक ब्यूटी

ते साकदार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करी रहे हो। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद एसाक डार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करी रहे हो।

0: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: Coke Studio, Season 14.

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: ऐ बीरोनो की स्किन हर इमेज लाइ छा डैमेज ऐ डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट ड्राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जे में आहिन चावरन जो खूबियो ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के ब्लॉक करे ऐ चावरन जो खूबियो जिल्द मा फाइन लाइंस ऐ झुरन के घट कन ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम निहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट उन संगरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जे जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
3: ढाडो सुठो
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
2: सुनते रहो GFM 90.8।

0: मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ।
1: थैंक गॉड शी इज हियर। सिस्टर, मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। ओके जान, आई एम ऑफ नाउ एंड आई विल सेंड यू सम फूड। सिस्टर, इनका ख्याल रखिएगा। हाँ, आई एम जस्ट कमिंग।
2: आपकी ड्रिप चेंज होने वाली है, मेडिसिन लिए आपने?
3: जी, कल रात से बड़ी बेचैनी हो रही है। I can't seem to sleep. मुझे लगता है दवाइयों का साइड इफेक्ट है।
2: कभी कभी बिला वजह बेचैनी हो जाती है।

0: हैदराबाद में दोस्त था कतल थल पोरी जो लाश कब्र कुशाई बाद वारिसा नवाले पुलिस गिरफ्तार जवाबदार कादर जी निशानदेही ते कब्र कुशाई कराई मकतूल आशिक सोलंगी जो लाश पोस्टमार्टम बाद वारिसा नवाले के पुलिस मूजिब जवाबदार वाक्य के लिखण लाए आशिक जो लाश पैंजे घर अंदर दफन कर छो हो खबर लो में नौजवान जा कातिल गिरफ्तार न थियण खिलाफ वारिसन जो बाईपास से धरणो वारिसन जो चवण आए तो पुलिस केस में नामजद जवाबदार अताउल्ला आरिजो आरिफ आरिजो ताहिर आरिजो के गिरफ्तार ना औरतों ने बारन समेत रोड से वेठल आयो जवाबदार गिरफ्तार कर इंसाफ कर वे सगियों में चोरी इल्जाम में मारजी वियल नौजवान के वारिसन जो लाश रखी एहतजाज गोठ हाजी जवान कलोड़ो में मोटर चोरी के इल्जाम हेठ कतल थियल नौजवान हाकिम कलोड़ो के वारिसन लाश थाने आडो रखी एहतजाज वारिसन नौजवान के नाहक कतल किया जवाबदार के गिरफ्तार कर इंसाफ कर वे नौशरफ फिरोज वेझो मकतूल अब्दुल रशीद सोलंगी जा कातिल गिरफ्तार न थियण खिलाफ वारिसन जो एसएसपी ऑफिस अगैं एहतजाज वारिसन तेरह दिन गुजरण बावजूद पुलिस कातिल गिरफ्तार न कया मौतमार धमकियों मिली रही जवाबदार गिरफ्तार कर इंसाफ कर वे बेल्जियम नजाद अमरीकी साइंसदान फ्रांसिस हॉल्जन फिजिक्स जो नोबेल इनाम माने वरतो फ्रांसिस हॉल्जन खला ईंदड़ पुरसरार इंतहाई घट नजर ईंदड़ जरन के दरियाफ्त कयो हो नोबेल कमेटी मूजिब फ्रांसिस हॉल्जन के न्यू टेनोज के गिरफ्तार से फिजिक्स जो नोबेल इनाम दिनो वो है
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
3: सुबह

सामईन अवां जा कहिड़ा हाल आहिनि? अवां खुशबाश आहियो, अवां ठीक ठाक आहियो, अवां चाक चङा भलाई मतारा जोड़ आहियो। असांजी दुआ आहे त सदाई तारनि में चंडु हुजो, खीर में खंडु हुजो, मेवन में अंबु हुजो, कदें भी अवां जी मुर्क मेरी न थिए। सदाई अवां जे लुड़कन जो डुकार ऐं मुर्कन जो सुकार हुजे, शाल अवां खे कोसो वा न लगे, शाल अवां डुख्यो ॾींहुं न ॾिसो, जुग जुग जीओ मुर्कंदा महकंदा ऐं गुलनि जीअं टिड़ंदा रहो। मौज सामईन ही आहे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क जो, GAFM मीरपुर खास, GAFM सखर, GAFM लाड़कानू, GAFM मोरो, GAFM मेहरापुर, GAFM सकरंड, GFM मटियारी, ऐं GFM मातली जो आवाज़ हाज़िर आहे अवां जो पंहिंजो शो सिंधड़ीअ जी शाम।

सिंधड़ीअ जी शाम में यूनिस बकारीअ जा सलाम। सामाइन यकीन अॼु अवां सां अवां जूं ॻाल्हियूं जारी रहंदियूं ऐं अवां मैसेज करे सघो था। जेकर शामिल थियण चाहियो था त टाइप करियो MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो 888-881 ते मैसेज हाणे ई मोकिले छॾियो। असां आबदा परवीन जी हिन सॉन्ग खां पोइ तव्हां सां मिलूं था थोरी देर में। वञा मैसेज शामिल करण लाइ इजो मां वापसि थो अचां।

जनाब आपका परवीन जी ट्रैक तंगे बदराई ब्रेक वी सो दिसूं था ट्रैक तेज प्ले थी चुको बिल्कुल क्यों था हाँ सो जनाब गजी बुधी था वो आपका परवीन जी सदा के

जनाब वेलकम बलिकार खुश आमदीद ही आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क अवन पने शो तमा बुधो प्या सिंधड़ी जी शाम है जी शाम में सिकवर सलाम ऐं अवां जी मोहब्बतूं प्यार ऐं पंहिंजा विया रंग खणी अवां जी खिदमत में हाज़िर यूनिस बकारी मोहब्बतुनि जी महफ़िल जारी ओसारी जी मज़ सामाइन जेकॾहिं अवां शामिल थियण चाहियो था त हाणे ई मैसेज मोकिलियो लिखो MTI स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-881 असांजो नंबर आहे उन ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो असीं ॾिसंदासीं त अॼु असां सां गॾु केरु हूंदो ॻोठ मोहम्मद यूसुफ़ ख़ासकेली खां रशीद अली ख़ासकेली ॿुधे पियो मिठा माण्हू तमामु घणियूं महिरबानी

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप साज़ी आवाज़ी साथ में वने मैसेजेस मोहब्बतूं तमाम घणी मेहरबानी वा सबनी जो लख थोरा जो ता असै बुधो पिया ए मोहब्बत पे जी एफएम 88 रेडियो नेटवर्क के कुछ मैसेजेस जे के ता शामिल कदा हलंदा सी आई यकीनन मैसेज असा के मेहराबपुर खान जो को पतो उनते असा ट्रैक ता ले प्ले करे छियो हो ए मेहराबपुर जे वेजो जो को गोठ है वो आहे जी जनाब लाखा रोड ए उता का असा के ज्वाइन कयो हो जी जनाब अब्दुल जब्बार भट्टी साहब अब्दुल जब्बार भट्टी साहब तमाम घणी मोहब्बत ता जो तवा असा के ज्वाइन कयो अवा सा साण शामिल रहया तमाम घणी मोहब्बत ता जो आई ए ता जा लख थोरा आई जी जनाब सुधार सोबारो भट्टी अवा सा के बुधे पियो तमाम घणी मोहब्बत ता लिखे सलाम वालेकुम अस्सलाम किरोड़े कृपा अवा जा साईं खुश जो आबाद जो तारण में चंड खीर में खंड मेवन में अंबो जो मोहब्बत अवा जो आई जनाब शाम का सलाम कबूल हो यो मैसेज मोकलियो आहे जी जनाब अच्छा शाम जो पौना पंज पौना छह बजे लाइट हली वी उनके अग में मैसेज शामिल कर मैसेज पहुतो ही हाँ अठहत्तर मोरी का यो मैसेज पहुतो राजा एच जी जनाब भाईजान तमाम घणी मेहरबानी लाइट हली वी उनका अग में राजा एच सी किशोर कुमार अवन तमाम घणी मेहरबानी हीरा लाल ती बुधे पियो तवां वट लाइट हलाए वही अन बहरहाल जेकॾहिं वई हूंदी त अफ़सोस ज़रूर थियो हूंदो छो त तव्हां पंहिंजो मैसेज न ॿुधी सघिया हूंदव बहरहाल अवां जी तमामु घणियूं महिरबानी अवां जा लख थोरा ऐं जनाब असांखे रवि कुमार जॉइन कयो आहे मातली खां रवि कुमार ऐं थैंक्यू जी जो अवां सां गॾु विक्रम शामिल आहे किरोड़े कुर्ब तव्हांजा थैंक्यू ऐं भली कार चवंदासीं तव्हांखे जल्दी जल्दी सां टाइप करे वठो लिखो MTI स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो 888-881 जो नंबर जी हा 881 शुरूअ में MTI लिखणो आहे ऐं उन खां पोइ तव्हांखे असांखे मैसेज मोकिलणो आहे ओके जनाब ॾिसी था वठूं हाजी गुलाम खासकेली झंडो मरी खां कुर्बान अली खासकेली साहब अवांजी तमामु घणी महिरबानी वॾा वॾा अवांजा तव्हां लिखियो आहे त असांखे गानो ॿुधायो ओके कोशिश कंदासीं तव्हां लिखियो फौजिया सुमरो जी बिल्कुलु प्ले कंदासीं ऐं तालके सिंधड़ी खां असांखे ज्वाइन कयो आहे जी जनाब ज़िले मीरपुर ख़ासि खां असांखे मैसेज पहुतो ॻोठ आहे आलम खान जरवार उतां खां रियाज़ हुसैन जरवार वफ़ा इमामुद्दीन जरवार ॿुधनि पिया तमामु घणी मोहबत जी जनाब त पोइ अच्छा अवां ॿुधो पिया असांजो आवाज़ मैसेज सेंड करे सघो था लिखो MTI स्पेस पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो पंहिंजो नालो 888-881 असांजो नंबर आहे हुन ते मैसेज असांखे ज़रूरु मोकिलिजो ॾिसंदासीं त असां सां गॾु हाणे केरु शामिल थींदो रोहिड़ी सखर खां असांखे नज़ीर अहमद मंगरियो साहिब ॿुधे पियो चवे थो त उर्स चांडियो जो कलाम ॿुधाइजो ऐं टोड़े नेठ टोड़े वियो यारी अच्छा ठीकु आहे मां कोशिशि कयां थो बिल्कुलु हाज़िर नज़ीर साईं तमामु घणियूं मोहबतूं तव्हां जूं कोशिशि कंदासीं जेकॾहिं मिली वियो त इहो ट्रैक तकिड़ो तकिड़ो त बिल्कुलु तव्हांखे ॿुधाईंदासीं मोहबतूं जो अवां असां सां शामिल थी चुका आहियो भली कार

जे कबावत खान शौकत अली जखरानी साहब जो आइन के और अहमद अली जखरानी सा गद तवा लिखे ते प्रोग्राम पसंद आए मोहब्बतू अवा जो इन साई मिठा मानो मेहरबानी।

con Rekha Chohan Kumar Kohli, Dr. Anita Chohan, Sangeeta Paras ke message pa to awajub tamam gadi meherbani valikar ji maz samain yakinan asa 6 wage ka po tanju live calls watandasi tesi thi tama message mokle likho MTI space rahi pe ne gothan shehar jo nalo likho pe ne nalo likho ai send kayo 8881 te tande gulam haider je goth ji janab rahim ali chang je goth ma asa ke join kayo ahe chetan parmar avaju tamam gani meherbani chetan parmar ai जो सन बुधे तो मेहरबानी जी जनाब उन जो नालो आए पुटड़े जो करण परमार ओके वेलकम चंदासी तांके आई बेबी हिना परमार बुधे पई अवाजु तमाम घणी मेहरबानी तालिक सर यूनिस क्या हाल है मां बिल्कुल ठीक है ता खुश आयो चंगा भला मतारा जोड़ आई उम्मीद है ता खुशबाश हुंदो या शाश विशाश जी मुझे सामने असल आवाज ताई पहुंचन हों हाँ बिल्कुल पहुंचन हों बुध पे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क के जी एफ एम मेरप्रफास जी एफ एम लाड़काणू जी एफ एम सखर जी एफ एम मोरो जी एफ एम मेहरापुर जी एफ एम सकरंड जी एफ एम मटियारी जी एफ एम मातली के एक ही वक्त तरह

जी मदर सामिन जेकॾहिं असां अवां पाण सभई गॾिजी कंदासीं अॼु कुर्ब जी कचहरी ऐं हाल अहिवाल कंदासीं त तव्हां बि असांखे ॿुधाए सघो था किथां किथां कहिड़े शहर वाइण वस्ती ऐं बस्ती मां ॿुधो पिया सो बसि अवां जे हिकड़े मैसेज जो ओसियड़ो हूंदो इंतज़ारु हूंदो जेके माण्हू इंटरनेट जे थ्रू असांखे पूरी दुनिया में कनाइनि पिया उन्हनि जूं महिरबानी जी एफ एम एच एट रेडियो नेटवर्क जी ऑफिशियल लिंक ते तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे त वेलकम

जी वज़ी समें तां जे लाइ हिकिड़ो ज़बरदस्त ट्रैक असांजी क्यू शीट में शामिल आहे ऐं उहो यकीननि ॿुधाईंदासीं, पर हिकु दफ़ो ॿुधायूं त 5 मिंट बाक़ी आहिनि वञी मैसेज शामिल करण जा। ठीक 6 वॻे असां न्यूज़ ॿुधंदासीं ऐं 6 वॻे जी न्यूज़ खां पोइ जेको कमर्शियल ब्रेक हूंदो उन खां पोइ तमामु नेटवर्क ते तव्हां सभिनी मौज़ूस ॿुधंदड़नि साण हूंदासीं लाइव कॉल्स ते। फिलहाल ट्रैक ऐं ब्रेक जी हा त पोइ साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में प्रोग्राम आहे जारी ओ सारी। नंढड़े ब्रेक खां पोइ अवां सां गॾु हूंदो अवां जो पंहिंजो यूनुस बकारी।

0: से ये धर्म के और लॉन्ग मार्चेस के भयानक साए हैं दोबारा नमोदार हो रहे हैं।
1: नुकसान पहुंचाने चाहते हैं तो इसको हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे, किसी जरूरत नहीं होने देंगे। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा इंशाल्लाह, हमारी जिम्मेदारी है उसको इंशाल्लाह हम हर तरीके से उसको हम इंशाल्लाह उसको इंश्योर करेंगे। मैं भी उनको कहूँगा कि आप अपनी रोज की मांगों को क्या आपकी ये कार्रवाई पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगी या फायदा पहुँचाएगी, ये पूरी कौन इस बात से आगाह है। मैं अभी भी आपको ये गुजारिश करूँगा कि आप रोज के नाम लें, इस आप अपनी लॉन्ग मार्च को धरने को आप इसको खत्म करें और खत्म करेंगे तो हम यकीन आपके साथ बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे।
2: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पी टी आई के धरणनि जी सियासत छॾण जो मशवरो ॾेई छॾियो। लॉन्ग मार्च ख़त्म करण जी सूरत में ॿीहर ॻाल्हियूं करण जी दावत बि ॾेई छॾी। इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म चयो त धरणे ऐं लॉन्ग मार्च वारी सियासत जो पहिरियों निशानो मैशत हूंदी आहे। हुकूमत नेक नियती सां पी टी आई सां ॻाल्हियूं कयूं, छा मुआशी फीते खे ॿीहर रोकण मुकदुश्मनी न आहे। पी टी आई वारा होश खां कमु वठनि, लॉन्ग मार्च ख़त्म कनि त ॿीहर ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं। अपोजिशन लीडर महमूद खान चकज़ई अपोजिशन टीम के हुकूमत से ॻाल्हियुनि लाइ हिदायतूं ॾेई छॾियूं। हुकूमती आछ जो मुस्बत जवाब ॾियण जी हिदायत, बानी सां मुलाकात पहिरियों शर्त करार। बैरिस्टर गोहर चयो आहे त असांजो को बि मुतालबो गैर आइनी न हो, ॻाल्हियुनि जो नाकामी जो मलबो हिक ॿिए मथां न विझणु घुर्जे। ॻाल्हियुनि वारी हुकूमती आछ नुमाइशी आहे। असद कैसर चयो त संगीन ख़दशनि बावजूदि हुकूमत सां ॻाल्हियुनि लाइ तयारु आहियूं, पाकिस्तान ख़ातिर सियासी जमायतुनि खे ॻाल्हियूं करणियूं पवंदियूं।
3: रियासत बिल्कुल माँ होती है लेकिन रियासत को बाप का रोल भी करना पड़ता है। बिगड़े बिगड़े बच्चे और ऐसे लोग जो माँ के प्यार से या माँ की इज्जत से खेल रहे हों, जो उसको नुकसान पहुँचा रहे हो माँ को, तो वो फिर बाप का जो एक रोल है वो भी करेंगे। और इस रोल को पहले भी किया है, कहाँ होती है जो जब चलती थी तो सारी रियासत जो थी वो एक काम रही होती थी, सारा निज़ाम रुका होता था। कहाँ है आज रियासत का फैसला है और उस फैसले के बाद है कोई, ये रियासत का फैसला है। वो TLP हो, वो PTI हो, वो कोई और जमात हो, नो नॉनसेंस।
2: रियासत बिल्कुल माउ आहे, कॾहिं कॾहिं रियासत खे पीउ जो किरदारु बि अदा करणो पवंदो आहे। मुल्कती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त ॿुधायो किथे आहे TLP जेका हलंदी हुई त समूरो निज़ाम रुकजी वेंदो हो, हाणे किथे आहे? रियासत जो फ़ैसिलो आहे त TLP हुजे या का ॿी जमात, कंहिंखे बि बेवकूफ़ी करणु न ॾिनी वेंदी। KP बाबति आइनी मामलनि ते मुशावरत थी रही आहे। पंजाब हुकूमत बि सूबे में कलम 144 लागू करे छॾियो, 10 ॾींहनि लाइ जलसनि जलूसनि ऐं इज्तिमाउनि ते पाबंदी हूंदी।
4: बगैर मामला हल हों, लेकिन अगर टेररिज्म जो दहशत गर्दी जिस तरीके से इस मुल्क में है उसको कंट्रोल करने के लिए आईनी जो भी तरीके का हुआ उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा।
2: दहशतगर्दीअ खे कंट्रोल करण लाइ को हल आहे त थियणु घुर्जे, एमरजेंसी लॻाइण बिना मसला हल थी सघनि था त थियणु घुर्जनि। बान सैदाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर चयो त बिलावल भुटो ज़रदारी हुकूमत अपोज़िशन विच में ॻाल्हियुनि जी कामयाबी लाइ वॾी कोशिश कई। हुकूमत अपोज़िशन विच में ॻाल्हियूं नाकाम छो थियूं सभिनी खे ख़बर आहे, पीपुल्स पार्टी जमहूरी जमात आहे, ॻाल्हियुनि ते यकीन रखे थी।

असां सभु आवाम वालो जवाबदार आहियूं। आवाम खे ॾिसणु घुरिजे त संदन चूंडियल नुमाइंदा संदन लाइ कमु करे रहिया आहिनि या नाकारी सियासत करे रहिया आहिनि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो आहे तमाम ॾिसे त हिकु तरफ़ चूंडियल नुमाइंदो आहे जेको हिकु महीनो ऑफिस नथो वञे न ई को इजलास करे रहियो आहे। ॿिए तरफ़ अहिड़ो शख़्स आहे जेको ॾींहुं राति कमु करे रहियो आहे। आवाम खे दरख़्वास्त कंदुसि त ज़रूरु ॾिसनि संदन चूंडियल नुमाइंदा किथे वक़्तु विञाए रहिया आहिनि।

यमन में सऊदी इतिहादी फौज ऐं हूसी बागन में चकरियूं जारी। हुसिन पारां सऊदी अरब में तेल कंपनी अरामको खे निशानो बणाइण जी दावा। यमनी सरकारी फोर्सिस मूजिब हुसिन इमदादी सामान खणी वेंदड़ ट्रक ते हमिलो कयो, जंहिंजे नतीजे में हिकु ॼणो शहीद थियो आहे। हुसिन सऊदी अरब में टिनि हंधनि ते हमलनि जी दावा कई। ईरान सां ॾेती लेती बंदि कयो, ॿी सूरत में पाबंदियुनि लाइ तयारु रहो, अमरीका ख़ानगी बैंकुनि खे ख़बरदार करे छॾियो। अमरीकी नाणे वारी वज़ारत मूजिबि ईरान सां ॾेती लेती कंदड़ ख़ानगी बैंक्स खे बिना कंहिं इतिला जे अमरीकी पाबंदियुनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। ख़ानगी बैंक्स ईरान सां हर क़िस्म जी ॾेती लेती फौरी तौर बंदि कनि। गॾियल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस जे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां मुलाक़ात। अफ़गानिस्तान समेत खिते जी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही अॻवाननि जो मसइले जे हल लाइ सफ़ारतकारीअ ते ज़ोर। एंटोनियो गुतरेस चयो आहे त धुरनि खे मसइलनि जे हल लाइ सफ़ारतकारी तरफ़ अचणु घुरिजे। पाकिस्तान जी कोशिशुनि सबबि अमरीका ऐं ईरान में जंगबंदी थी, जेका साराह जोॻो अमल आहे। इसहाक़ डार चयो त अफ़गानिस्तान जी सरज़मीन तां पाकिस्तान ते हमला थी रहिया आहिनि, आलमी बिरादरी नोटिस वठे। वज़ीर आज़म पारां सियारे में गैस लोड मैनेजमेंट लाइ गॾियल हिकमत अमली तयारु करण जी हिदायत। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि सियारे में गैस जी लोड मैनेजमेंट बाबति अहम इजलास। मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल में गैस जी बिना रंडक दरामद लाइ ज़रूरी क़दम खणण जी हिदायत। घरेलू सतह ते मक़ामी गैस जी जाइ ते मुतबादल तवानाई ज़रियनि खे हथी ॾियण जो बि फ़ैसिलो। वज़ीर आज़म जी गैस लोड मैनेजमेंट बाबति आगाही मुहिम हलाइण जी हिदायत। सिंध असेंबली जे ख़सूसी कमेटीअ जो इजलास, के ई सी जो सी ओ न आयो। कमेटी पारां कावड़ जो इज़हार, के इलेक्ट्रिक जे नुमाइंदनि पारां घुरबल जवाब न ॾियण ते कमेटी वज़ाहत तलब करे वरिती। के इलेक्ट्रिक जे नुमाइंदे खे टिनि ॾींहनि अंदरि लिखत में जवाब जमा करण जो हुकुम। सिंध असेंबली जे ख़ासि कमेटीअ पारां के इलेक्ट्रिक खे लिखत में हुकुम जारी। के इलेक्ट्रिक जे नुमाइंदे जो तर्ज़ अमल कमेटीअ जे इस्तहक़ाक़ जी भञकड़ी करार। के पी जे इलाइक़े डेरा इस्माइल ख़ान में एफ बी आर जे चार अहलकारनि समेत पंज ॼणा शहीद। डी आई ख़ान पुलिस मूजिबि अभाया पुल वेझो हथियारबंदनि जी गाॾी ते फायरिंग। चार एफ बी आर अहलकार शहीद थिया। बनू रोड ते ट्रैफ़िक संभालींदड़ अहलकार खे बि शहीद कयो वियो। पुलिस इलाइक़े में सर्च ऑपरेशन शुरू करे छॾियो आहे।

0: वालेकुम अस्सलाम, तमाम घणे मेहरबानी मिठा माण्हू, थैंक यू, खुश हुजो, आबाद हुजो। सेवण साईं जी सरकार, यानी असांखे सेवण शरीफ खां याद कयो जी, महिरबानी पवर साहब, थैंक यू। ऐं ॾिसंदासीं हाणे असांखे केर थो ॿुधे ऐं केर थो कॉल करे, त हुन जे लाइ हलंदासीं कॉल जे तरफ़ ऐं कॉल अटेंड करे वठंदासीं। हलो, अस्सलाम वालेकुम जी, केर साहब ऐं किथां खां? छा हाल आहे जखराणी साहब?
1: बिल्कुल,
0: अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला। अवां सां गॾु ॿियो केर थो ॿुधे?
1: नज़ीर मंगरो, पठान भड़की वारो, शंकर जखराणी।
0: सभिनी जूं महिरबानी, वॾा वड़ साईं, थैंक यू, थैंक यू, भलीकार।

0: ॾिसंदासीं काल ते असां सां गॾु केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। जी केरु साहब ऐं किथां खां? जी नज़ीर अहमद बंगरे साहब, आवाज़ अचे पियो?
1: बिल्कुलु आवाज़ अचे पियो साईं, क्लियर तमामु। ॾखण में हवाऊं थधियूं ठहियूं, फर्स्ट क्लास थियूं हलनि सखर ताईं।
0: हा, रोहिड़ी सखर जा कहिड़ा हाल आहिनि?
1: रोहिड़ी सखर बिल्कुलु ख़ुशि पियो लॻे, सिंधु दरिया किनारे करी करी वेंदमि, तमामु मज़ो ईंदो आहे।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
1: रहमत अली ऐं शौकत अली जे खाने सां।
0: जी जी,
1: इरफान थेबो आहे, क़ुर्बान ऐं छा खेली
0: आहे,
1: शाह खान पटके वारो आहे, ऐं चोन कुंवर कोलिया दा जेके बि सभु ॾींहं सभिनी खे।
0: वालेकुम अस्सलाम, कहिड़ो ॾे कुर? जी महिरबानी। ओके जनाब, साज़ ऐं आवाज़ यार।

0: ભલા બેન મિન્ટન જો અમાકે ગાનું બુધરાય બ્રેક વઠાવ કમર્શિયલ બ્રેક ખા પછી વાપસ અચું ભલા चलो हिकड़ी कॉल अटेंड के हुदा उनका कमर्शियल ब्रेक दौरान प्लीज प्लीज कॉल न कजो वरी जडे वेलकम चाहत नहीं कॉल कजो काफी मेहरबान ब्रेक दौरान कॉल कंदा इन शिकायत कंदा इन कॉल खणी न तो भला ब्रेक में खण दस्त केड़ो फायदो चलो डिसी दा वटो कॉल ते के रहे हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम यूनुस साहब कुंदरी सा चोन कुमार पूरी हो गला
0: शाल चोन कुमार साहब खुश आयो ठीक आयो अलहमदुल्ला मुख्य ब्रेक वो चवन तक दोस्त नाला वी सोता थैंक यू खुश हो जो आबाद हो जो ओके जनाब ट्रैक है मास्टर मंजूर आवाज है मुझे कबर से लिखी छो मुसा यार वफा न कई इन ट्रैक के बुधना बुधना ब्रेक था वी वो कमर्शियल ब्रेक का बिना ब्रेक यूनिस बकारी वहां से कद हों सास आवाज साथ असा गड रजो कलाक जो बाकी

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हर इन्हीं जलाए छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चार इंच खूबियों ए कोजी कैसे फॉर्मूलेशन अरे न खुश ए बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चार इंच खूबियों कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उनकी नमी के ब्लॉक करे चामरन जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस झुरन के घट कर रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन दिन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ब्राइट उनसा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
0: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। हर चप्पा हर गोशा
2: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

मिंटन जे बाकी साथ में असन जो साथ भी हों उन साई मुझे कॉल ते दिसंदासीं केर आहे असां सां गॾु हलो अस्सलाम वालेकुम हलो अस्सलाम वालेकुम आवाज़ अचे पियो साईं हलो अच्छा जी शायद कॉल करण वारे वटि

0: जी फरदाना परवीन की आवाज में ही ट्रैक बुदुन प्यार दिसुदा कॉल ते कह रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम सरकार वाले प्यारे और खैर
0: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। केर साहब है किथा का
1: सखी शादी वाने जे बारे में गोठे गोठ खबर बिल का रामचंद्र उदासी।
0: रामचंद्र उदासी साहब खुश आयो जल्दी नाला वटी वेटो। अच्छा मागी कॉल में आवाज ही हले वियो है शायद नेटवर्क। जी एफएम 88 रेडियो नेटवर्क के मेरपुर खास सखर लाड़काने मोरे मेरापुर सकरंट मातली ही मटियारी जे गडेल आवाज के वा कनायो पिया। शो जो नालो है सिंधड़ी जी शाम आई अमा जो आर जी अमा समखाते भाई यूनिस बकर काल ते केर हुंदो दिसूं था। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी केर साहब है किथा का
1: साजन वाला चीतर बोलको
0: चाला चांडियो साहब खुश आयो
1: केर रहमान दो।
0: हां अमा सगर भी केर भी बुदे मिठा मानू
1: जी मैं भाव आज चांडियो है मंजूर चांडियो बो नजर हुसैन चांडियो है मैं प्री प्यारो भाव बाबर हुसैन चांडियो
0: सबनी मिठन मानन के भलीकार।
1: थैंक यू सर।
0: थैंक यू। दोस्तों मेहरबानो कदरदानो गालियों कने कने वक्त गुजरियो है बाकी असन वक्त घणो बचियो ताके बुधाई बैठा वक्त तमाम थोरडो बचियो टोटल 8-9 मिनट बचे है। सुंदा काल ते केरा है।

0: के रहे सीधा उठवालो अस्सलाम वालेकुम केर साहब है किथा का मिठी थरपारकर का मलिक मोहम्मद बलोच साहब के वेलकम था चो मां थोराए तो आया तवा जो यकीनन मुझे ला खुशी जड़ी गाल है त जेकरे मुझे करे मुझे कोशिश से करे या मुझे नेटवर्क की पेशकश से करे मुझे इन इदारे जे करे के खुशी मिले थी त जीएफएम 88
1: तवा के खबर आते न नौसानौसी जे दौर में केदा मान के टेंशन परेशानी
0: बिल्कुल
1: तवा के ई बकरा के पुतंदा आयो त सब कुछ विचारे
0: साईं असा जे जको जीएफएम 88 नेटवर्क है उन जी कोशिश भी है ये त असा पने बुधंदड़न जे हर दुख सुख जा धणी हो जो भली दोस्तन नाला वठी वेठो

0: ਲਿਸਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲ ਤੇ ਅਸਾਂ ਅਗਰ ਕੇਰ ਆਏ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਹੈਲੋ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ ਸਬਨਾਸ ਕਿਥਾਂ ਕਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਵਾਇਣ ਵਸਤੀ ਕਾ ਹੈਲੋ अच्छा नथा बुधाए सको ना मालूम अग खम बुधायो ओके छा बुधाए चाहिदो छा था चवण चाहयो जी तमाम गडी मेहरबानी हु लख थोर आला साई तवा के खुश रखे मुजी लॉटरी खुली हा हा बिल्कुल खुली आ बिल्कुल लॉटरी खोली है मेहरबानी थैंक यू अल्लाह हाफिज अल्लाह करे खुश हो जो आबाद हो जो थैंक यू मेहरबानी जी जनाब आखिरी लम्हात में केर हों असा सा कॉल ते गद त पोए नंबर नोट करियो 0334 35 35 257 86 अच्छा यो नंबर वक्त पुजाणी ते पहुचण रो जो यूनुस बकारी वणण रो आखरी कालू अटेंड ता कयूं हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: कीर साहब ई किथां का
1: सजन खान की जा पुला पुला मिट्टी सत पार कर
0: जी छाल है गुलाब गुल
1: बिल्कुल ठीक है ताम रहयो
0: अल्हम्दुलिल्लाह वहां जी दुआ लगी पे केर पे उदे ता सगद अच्छा थैंक यू वालेकुम सलाम कुर्ब सई ओके जनाब आखिरी लम्हात आहिनि मां तकिड़ो ॿुधाए वठां मांखे बाक़ी ॿिनि मिंटनि जो सां आख़िरी गानो प्ले थियण वारो आहे ट्रैक कहिड़ो हूंदो उहो मूंखे ख़बर कोन्हे पर प्ले थींदो कॉल अटेंड करे था वठूं हुन दौरान ॾिसंदासीं ट्रैक कहिड़ो थो हले पहिरीं हलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी केर साहब ऐं किथां खां छा हाल आहे साईं ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो अलहमदुल्ला तव्हां सां गॾु केरु पियो ॿुधे
1: मुंहिंजो बाबा मोहम्मद अमीन कलोड़ो मुंहिंजो दोस्त निसार कलोड़ो अॼु तव्हां जीअं पंहिंजे क़ौम जेको असां
2: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.

इरसा जी पानी विच एक बदरा टरुखी फार्मूलो तहत करण वाले रविश बरकरार रबी जी मदद लाए पानी खोट साढ़ा 22 सैकड़ो रहन जो कातो लगायो वो इरसा एक बदरा टरुखी फार्मूले तहत पानी विरण वाले फैसले ते सिंध जो सख्त एहतजाज रबी जी मदद बाबत पानी विरछ के हवाले से इरसा के सलाहकारी कमेटी जो इजलास सिंध समेत चयनि सूबन के नुमाइंदन की शिरकत इजलास के आगाही दिनी वही रबे की मुद में कोटड़ी का हेठ पानी न वही सिंध में बरसात जो को भी इम्कान ना है। बिजली पैदावार वाले मनसूबन के कम में भी देर से कावड़ जो इजहार पाबडा अख्तियार इरसा मेंबर के मनसूबा 2028 तक मुकम्मल करने की खातरी कराए छी।

0: कल्चर के भयानक साए हैं वो दोबारा नमोदार हो रहे हैं।
1: नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो इसको हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे, किसी जरूर नहीं होने देंगे। कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा इंशाल्लाह, हमारी जिम्मेदारी है उसको इंशाल्लाह हम हर तरीके से उसको हम इंशाल्लाह उसको इंश्योर करेंगे। मैं भी उनको कहूँगा कि आप अपनी रोज के नाकों को क्या आपकी ये कार्रवाई पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगी या फायदा पहुँचाएगी, ये पूरी कौम इस बात से आगाह है। मैं अभी भी आपको ये गुजारिश करूँगा कि आप रोज के नाकों लें, इस साल आप अपनी लॉन्ग मार्च को धरनों को आप उसको खत्म करें, और खत्म करेंगे तो हम यकीनन आपके साथ बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे।
2: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी पी टी आई के गालन लाए मशरूत आज लॉन्ग मार्च ए धरनो खत्म करण जो शर्त रखी छो। इस्लामाबाद में तकरीब के खिताब कदे वज़ीर आज़म चयो तो धरने ए लॉन्ग मार्च वट सियासत जो पेरो निशानो मैशत हुंदी आए। हुकूमत नेक नियति सा पी टी आई सा गालियों कयूं, चा मुआशी फीते के बीहर रोकण मुल्क दुश्मनी ना है। पी टी आई वारा होश का कम वठन, लॉन्ग मार्च खत्म कन तो बीहर गालियों थी सकन थी। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन टीम के गालिन वरी हुकूमती आछ जो मुस्बत जवाब देने की हिदायत कर छी। बानी से मुलाकात गालिन की बहाली लाए पेरों शर्त करार। बैरिस्टर गोहर चया है असो तो को भी मुतालबो गैर आइनी न हो, गालिन के भी लॉन्ग मार्च से मशरूत न किया वे। चैन टुटन न घुर्जे, वेहण से ही हल निकर। असद कैसर चाह संगीन खदशन बावजूद हुकूमत से गाल तैयार आयु, पाकिस्तान खातर सियासी जमायतन के गालू करनी पवंदूँ।

0: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जी पीटीआई के गाले लाए मशहूर था लॉन्ग मार्च ए धरणो खत्म करण जो शर्त रखी छो इस्लामाबाद में तकरीब के खिताब कदे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चाहे तो धरणे लॉन्ग मार्च वाली सियासत जो पे निशानो मईशत हुंदी आहे हुकूमत ने अखमियती से पीटीआई से गालू क्यों माशी फीते के बीहर रोकने लाए मुल्क दुश्मनी ना है पीटीआई वारा होश का कम वटन लॉन्ग मार्च खत्म करन ता बीहर गालू थी सकन थी हूं अपोजिशन लीडर महमूद अचक सही अपोजिशन टीम के गालियन वारी हुकूमती आज जो मस्बत जवाब देने की हिदायत कर छी बानी से मुलाकात गालियन की बहाली लाए पे शर्त करार बेस्टर गोहर चयो था असां जो को भी मुतालबो गैर आइनी न हो गालियन के भी लॉन्ग मार्च से मशहूर न कर वने चीन टुटण ही न घुर्जे वेहण सा ही हल निकर असद केसर संगीन खदशन बावजूद हुकूमत से गाल तैयार आयो पाकिस्तान खातिर सियासी जमातन के गाल कर रियासत बिल्कुल माँ है कदें कदें रियासत के पी जो किरदार भी अदा करो पवन है ममलकती वजीर तलाल चौधरी बुधायो किथे है टीएलपी जेका हलंदी हुई त समूरो निजाम रुकजी वेंदो हो हाने किथे है रियासत जो फैसलो है त टीएलपी हुजे या का बी जमात कंखे भी बेवकूफी करण न डनी वेंदी केपी बाबत आईनी मामलन ते पिशावत थी रही है पंजाब हुकूमत भी सूबे में कलम 144 लागू कर छो 10 डी लाए जलसन जुलूस इस्तेमाल ते पाबंदी हुंदी दहशतगर्दी के कंट्रोल करने लाए को हल आहे त थण घुर्जे एमरजेंसी लगाने बिना मसला हल थी सगन था त थण घुर्जन पान सईदाबाद में मीडिया से गलाइंदे वडे वजीर मुआद अली शाह चयो आहे त बिलाल भुट्टो जरदारी हुकूमत ए अपोजिशन विच में गालियन जी कामयाबी लाए वडी कोशिश कई हुकूमत ए अपोजिशन विच में गालियो नाकाम छो थियो सबनी के खबर आए पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात आहे गालियन ते यकीन रखे थे असा सब अवाम आडो जवाब दे आयो अवाम के दिसन घुर्जे त संदन चूंडियल नुमाइंदा संदन लाए कम करे रहा आहिन या नाकारी सियासत करे रहा आहिन वफाकी गरोसिर मोहसिन नकवी चयो आहे त अवाम ॾिसे त हिकु तरफ़ चूंडियल नुमाइंदो आहे जेको हिकु हिकु महीने ऑफिस नथो वञे न ई कोई इजलास करे रहियो आहे ॿिए तरफ़ अहिड़ो शख़्स आहे जेको ॾींहुं राति कम करे रहियो आहे अवाम खे दरख़्वास्त कंदसि ज़रूरु ॾिसन संदन चूंडियल नुमाइंदा किथे वक़्तु विञाए रहिया आहिनि
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
3: ऐं बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज ऐं डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ टिनि ॾींहनि में जल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हर हर ॾींहुं रहो ब्यूटिफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: एक मतलब पर बदकिस्मती से ये धर्मों के और लॉन्ग मार्चेस के भयानक साए हैं तो दोबारा नमोदार हो रहे हैं।
1: नुकसान पहुंचाने चाहते हैं तो इसको हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे, किसी जरूरत नहीं होने देंगे। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा इंशाल्लाह, हमारी जिम्मेदारी है उसको इंशाल्लाह हम हर तरीके से उसको हम इंशाल्लाह उसको इंश्योर करेंगे। मैं भी उनको कहूँगा कि आप अपनी रोज के नाखून दें, क्या आपकी ये कार्रवाई पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगी या फायदा पहुँचाएगी, ये पूरी कौन इस बात से आगाह है। मैं अभी भी आपको ये गुजारिश करूँगा कि आप रोज के नाखून लें, इस आप अपनी लॉन्ग मार्च को धर्मों को आप इसको खत्म करें और खत्म करेंगे तो हम यकीन आप जब बैठेंगे बैठ के बात करेंगे।
2: वजीर आजम शहबाज शरीफ जी पी टी आई के गालन लाए मशरूत आज लॉन्ग मार्च ए धरनो खत्म करने जो भी शर्त रखी छो। इस्लामाबाद में तकरीब के खिताब कदे वजीर आजम जो चवण हो तो धरने ए लॉन्ग मार्च वाली सियासत जो पहरों निशानो मैशत हुंदी है। हुकूमत नेक नियती से पी टी आई से गालू क्यों मुआशी फीते के बीहर रोकण मुल्क दुश्मनी ना है। पी टी आई वारा होश का कम वठन लॉन्ग मार्च खत्म कन तो बीहर गालू थी सकन थी।
3: अपोजिशन लीडर महमूद खान चक से अपोजिशन टीम के गादियन वाली हुकूमती आज मस्बत जवाब देने की हिदायत कर छी। बानी से मुलाकात गादियन की बहाली लाए पेरियों शर्त करार बैरिस्टर गोहर है असो को भी मुतालबो गैर आइनी न हो। गालियन के भी लॉन्ग मार्च से मशरूत न कर वे चैन टुटनी न घुर्जे पिहण सा ही हल निकर असद केसर है संगीन खिचन बावजूद हुकूमत से गाल तैयार आयु पाकिस्तान खातिर सियासी जमातन के गाल पवंद।
4: रियासत बिल्कुल माँ होती है लेकिन रियासत को बाप का रोल भी करना पड़ता है। बिगड़े बिगड़े बच्चे और ऐसे लोग जो माँ के प्यार से या माँ की इज्जत से खेले हैं जो उसको नुकसान पहुँचा रहे हो माँ को, तो वो फिर बाप का जो एक रोल है वो भी करेंगे और इस रोल को पहले भी किया है। कहाँ है वो पीएम जो जब चलती थी तो सारी रियासत जो थी वो एक काम रही होती थी, सारा निज़ाम रुका होता था। कहाँ है आज रियासत का फैसला है और उस फैसले के बाद है कोई, ये रियासत का फैसला है, वो TLP हो वो PTI हो वो कोई और जमात हो, नो नॉनसेंस।
2: रियासत बिल्कुल माओ है, कदें कदें रियासत के पी जो किरदार भी अदा करो पवन है। मुल्कती वजीर तलाल चौधरी जो चवण है तो बुधायो किथे है TLP जेका हलंदी हुई तो समूरो निज़ाम ही रुकजी वेंदो हो, हाँ किथे है रियासत जो फैसलो है तो TLP हुए या का भी जमात कंखे भी बेवकूफ़ी कर न डी वी KP बाबत आइनी मामलों से मुशावरत थी रही है। पंजाब हुकूमत भी सूबे में कलम 144 लागू कर छो 10 दिन ला जलसन जलूसन ए इज्तमाउन से पाबंदी होंगी।
5: इमरजेंसी के बगैर लगाए बगैर मामला हल हों, लेकिन अगर टेररिज्म जो दहशत गर्दी जिस तरीके से इस मुल्क में है उसको कंट्रोल करने के लिए आईनी जो भी तरीके का हुआ उसको फिर आखिरकार करना पड़ेगा।
3: दहशतगर्दी के कंट्रोल करण लाए को हल आहे त थियण घुर्जे, एमरजेंसी लगाण पे ना मसला हल थी सगन था त थियण घुर्जन। बान सईदाबाद में मीडिया सा गलाइंदे वडे वजीर वाद अली शेर चयो आहे त बिलाल भुट्टो सरदारी हुकूमत ए अपोजिशन विच में गालियन जी कामयाबी लाए वडी कोशिश कई। हुकूमत ए अपोजिशन विच में गालियन नाकाम छो थियो सभी के खबर आहे, पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात आहे गालियन ते यकीन रखे थी।
6: को जवाब दे, पब्लिक को सिर्फ एक चीज देखनी है कि क्या उनके मुंतखब नुमाइंदे अपना एक एक मिनट उनके लिए वक्फ कर रहे हैं या नेगेटिव सियासत पे वक्फ कर रहे हैं। एक चीज जरूर देखें, एक तरफ मुंतखब नुमाइंदा है वो एक एक माह से दफ्तर नहीं जा रहा और एक मीटिंग नहीं कर रहा, और एक तरफ वो शख्स है जो एक घंटे की भी गैप नहीं डाल रहा और आपके लिए काम कर रहा है। मैं जरूर पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों को जरूर कंसीडर करें कि जिनको आप इलेक्ट करते हैं वो अपना टाइम कहां पे खर्च कर रहे हैं। थैंक यू।
2: असां सभु अवाम आॾो जवाबदार आहियूं। अवाम खे ॾिसण घुर्जे त संदन चूंडियल नुमाइंदा संदन लाइ कमु करे रहिया आहिनि या नाकारी सियासत करे रहिया आहिनि। वफ़ाकी घरु वज़ीर मोहसिन नकवी जो चवणो हो त अवाम ॾिसे त हिकु तरफ़ चूंडियल नुमाइंदो आहे जेको हिकु महीनो ऑफिस नथो वञे, न ई को इजलास करे थो। ॿिए तरफ़ अहिड़ो शख़्स आहे जेको ॾींहं राति कमु करे रहियो आहे। अवाम खे दरख़्वास्त कंदुसि त ज़रूरु ॾिसनि संदन चूंडियल नुमाइंदा किथे वक़्तु विञाए रहिया आहिनि।

0: इस्लामाबाद में अपोजिशन इतिहाद की वही वेहक पीटीआई अगवाणन की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात मुल्की सियासी सूरत हाल पीटीआई के मार्च से गाल कामरान मुसा अपोजिशन मुलाकात की दरख्वास्त कई हुई मुल्की सूरत हाल से गाल
1: यमन में सऊदी इतिहादी फौज ए हूसी बागन में चक्रियों जारी हूसिन पारा सऊदी अरब में तेल कंपनी अरामको ए हवाई अड्डन के निशानो बढ़ाने की दावा यमनी फोर्सेज हूसी बागन के केतर ही हंधन तोते धिके छो हूसिन है तो सऊदी की अरामको ए हवाई अड्डन के निशानो बनाया वो है।
0: पाकिस्तान सऊदी अरब में 40,000 फौजियों की मुकररी वारी खबर के रद्द कर छोड़ो सुध समावारी वजारत मूजिब मक्का दिफाई माहिदे तहत सऊदी अरब में 30,000 से 40,000 फौजी मुकर करण वाली खबरों ख्याली हैं। हरमैन शरीफ ने सऊदी सलामती बाबत पाकिस्तान का मौके वाजे है ख्याली खबर का पासो किया
1: ईरान से लेती लेती बंद कयो बी सूरत में पाबंदन लाइ तैयार रहो अमेरिका खानगी बैंकन के खबरदार कर छो अमरीकी नाणे वाली वजारत मूजिब ईरान से लेती लेती कंदड़ खानगी बैंक्स के बिना कें इतला के अमरीकी पाबंदन के मोह दियण पवो खानगी बैंक्स ईरान से हर किस्म की लेती लेती फौरी तौर बंद कन।
0: ईरान मिसाइल्स की रेंज बढ़ाने जो ऐलान कर छो ईरान की कौमी सलामती बाबत सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी है तो असांजी हथियारबंद फौजी पहरी का वधिक तैयार है ईरानी फौज जो आंगुरियों ट्रिगर ते आहिन अमरीका इसराइल की नंढड़ी गलती जो जवाब भी ताकतवर अंदाज में दिनों वो
1: गडियल कौमन की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात बिन्हीं अगवाणन जो मसले के हल लाए सफारतकारी से जोर एंटोनियो गुतरेस चयो तो पाकिस्तान की कोशिशों सबब अमरीका ईरान में जंगबंदी थी जेका साराह जुगो है इसहाक डार जो चवण हो तो अफगानिस्तान की सरजमीन त पाकिस्तान से हमला थी रहा है आलमी बिरादरी नोटिस वे एंटोनियो गुतरेस के सदर आसिफ जरदारी पारा निशान इम्तियाज से भी नवाजे वो
0: हिस्सा की पानी विर्च एक्ट बदरा टे रुखी फार्मूला तहत करण वाली रविश बरकरार रबी की मुद लाए पानी कोट 22.5 सैकड़ों रहण जो काथो लगाया वो हिस्सा एक्ट बदरा टे रुखी फार्मूला तहत पानी विरायण वाले फैसले से सिंध जो सख्त एहतजाज रबी की मुद में बाबत पानी वर्च के हवाले से हिस्सा की सलाहकारी कमेटी जो इजलास सिंध समेत चईनी सूबन के नुमाइंदन की शिरकत इजलास आगाही दिनी वही तो रबी की मुद में कोटड़ी का हेठ पानी न वही सिंध में बरसात जो को भी इम्कान ना है बिजली पैदावार मनसूबन के कम में देर से कावड़ जो इजहार वापटा अख्तियार इर्सा मेंबर के मनसूबा 2028 तक मुकम्मल करने की खातरी कराए छी।
1: वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत हेठ एनएचए की जारी मनसूबन बाबत इजलास शहबाज शरीफ पारा एनएचए मनसूबन की थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत वजीर आजम चयो तो शाहराहू कें भी मुल्क की तरक्की लाए बुनियादी किरदार अदा क्यों कौमी शाहराहन ए मोटरवेज जो कम जल्द मुकम्मल कर वे
0: सिंध असेंबली की खसूसी कमेटी जो इजलास कई जो सीओ न आयो कमेटी पारा कावड़ के इजहार के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे पारा घुर्बल जवाब न दियण से कमेटी वजाहत तलब कर वरती के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे के तीन दिन अंदर लिखित में जवाब जमा करण जो हुक्म सिंध असेंबली की खसूसी कमेटी पारा के इलेक्ट्रिक के लिखित में हुक्म जारी के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे जो तर्ज अमल कमेटी के इस्तक की भजकड़ी करार

0: सिक्योरिटी फोर्सेज जो केपीजे इलाके उत्तर वजिस्तान में ऑपरेशन पंजा फारसी मारजी व्या वजफमी सिक्योरिटी सर्जन मूजिब उत्तर वजिस्तान में उचे इतला ते फोर्सेज दहशतगर्दन के थाकन के निशानो बनाए वो ऑपरेशन के नतीजे में पंजा फारसी दहशतगर्दन के जानो भेड़ो कयो वो सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ घरू वजीर मोहसिन नकवी पारा दहशतगर्दन खिलाफ़ कामयाब कार्रवाई के फोर्सेज के भेटा पेश दहशतगर्दी खिलाफ़ कार्रवाई जारी रखने वाले अजम जो बचाओ
1: खैरपुर रियासत के अगूणे वाली अली मुराद खान टालपुर की कोडिजी किले में जनाज नमाज अदा मीर अली मुराद खान टालपुर की जनाज नमाज में कमिश्नर सखर डिप्टी कमिश्नर खैरपुर एसएसपी खैरपुर शहर की वे अंग में शिरकत जनाज नमाज बाद मीर अली मुराद खान टालपुर जो मड़ मिट्टी माह हवाले वो
0: में दोस्त सां कतल थियल पोरी जो लाश कबर कुशाई बाद वारिसन हवाले पुलिस गिरफ्तार जवाबदार कादर की निशानदेही से कबर कुशाई कराई फख्तूल आशिक सोलंगी जो
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream Munfarid aur jadeed formulation ke saath aapko gora banaye Super White Oil Free Beauty Cream ke natural minerals jo de bina chip chip ke chehre par nikhar sirf chand dino mein A product by Aksa Cosmetics Pakistan
4: Suniye

चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करनी आ, रही न दूर तड़पायो, दिल जी गाल करनी आ, रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत ऐ सचाई, लबन ते मोरका विखरिल, दिलन में आ बेआई, चाहत जा चंग वजायो, दिल जी गाल करनी आ, चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करनी आ।

GFM नेटवर्क आए दिल जी गाल जे बुधंदड़न सबनी मानैतन महबूब दोस्तन प्री प्यारन दिलरुबा शख्सियतन के वेलकम भलीकार खुशामदी।

उसको फुर्सत ही नहीं वक्त निकाले मोहसिन, उसको फुर्सत ही नहीं वक्त निकाले मोहसिन, ऐसे होते हैं भला चाहने वाले मोहसिन। उसको फुर्सत ही नहीं वक्त निकाले मोहसिन, ऐसे होते हैं भला चाहने वाले मोहसिन।

और अब लगता है खो गई सुबह की उम्मीद और अब लगता है हम नहीं होंगे कि जब होंगे उजाले मोहसिन। हाकिमे वक्त कहां, मैं कहां, अदल कहां। हाकिमे वक्त कहां, मैं कहां, अदल कहां, क्यों न खलकत की जुबां पर लगाएं ताले मोहसिन। हाकिमे वक्त कहां, मैं कहां, अदल कहां, क्यों न खलकत की जुबां पर लगाएं ताले मोहसिन। वो जो एक शख्स मताए दिलो जान था न रहा। जो एक शख्स मताए दिले दिलो जान था न रहा, अब भला कौन मेरे दर्द संभाले मोहसिन। उसको फुर्सत ही नहीं वक्त निकाले मोहसिन, ऐसे होते हैं भला चाहने वाले मोहसिन।

अमा सभी मानतन महबूब दोस्तन जे नाव उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब जी खूबसूरत प्यारी आवाज में एक खूबसूरत ट्रैक अच्छुत गद जी ही गीत एंजॉय क्यों वरी पो वापस वरूं था बंधदा रहो जी एफ एम नेटवर्क।

अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ ग्लो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर दी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मुझे छोड़ चल अकेला कहीं दूर आने
3: वाह, क्या बात है सागर, जबरदस्त। बिल्कुल जबरदस्त है, पर जो है ना मना हूं तो तहां मुख्य तो ये लगन प्रोफेशनल सिंगर हो, पर जने भी कॉल कियो तो एक तो रेडियो बुद्धा कियो तहां के खबर पे जी सके तो प्रोग्राम में इन वक्त कोई कमर्शियल ब्रेक तो ना है, कोई न्यूज ब्रेक तो ना है, उन तहे मला वा जी कॉल लगे तो बेहतर है, टाइम छाती रहयो सबनी शन के दिसी करे कॉल कियो तो बेहतर है। जबरदस्त, तमाम बेहतरीन। को दोस्तन जो नाम शामिल करना चाहिए हो प्रोग्राम में? थैंक यू वेरी मेहरबानी।

जी दोस्तों जेके दोस्त प्रोग्राम में लाइव कॉलिंग वसीले असा सा गड शामिल थन चाहन था उन्होंने के बुधाई दोला ता असा जो लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488।

0: एक मौका पर बदकिस्मती से ये धरनों के और लॉन्ग मार्चेस के भयानक साए हैं तो दोबारा नमोजार हो रहे हैं।
1: नुकसान पहुंचाने चाहते हैं तो इसको हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे, किसी जरूरत नहीं होने देंगे। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा इंशाल्लाह। हमारी जिम्मेदारी है उसको इंशाल्लाह हम हर तरीके से उसको हम इंशाल्लाह उसको इंश्योर करेंगे। मैं भी उनको कहूँगा कि आप अपनी रोज की नाकुम हूँ, क्या आपकी ये कार्रवाई पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगी या फायदा पहुँचाएगी, ये पूरी कौन इस बात से आगाह है। मैं अभी भी आपको ये गुजारिश करूँगा कि आप रोज के नाकुम लें, इस साल आप अपनी लॉन्ग मार्च को धरने को आप इसको खत्म करें, और खत्म करेंगे तो हम यकीन आपके साथ बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे।
2: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई के गालिन लाए मशरूत आज लॉन्ग मार्च ए धरणों खत्म करने जो शर्त भी रखी छो। इस्लामाबाद में तकरीब के खिताब कदे वज़ीर आज़म जो चवण हो तो धरणे लॉन्ग मार्च वरी सियासत जो पहरों निशानो मैशत हूँ है। हुकूमत नेक नियति से पीटीआई से गाल क्यों मुआशी फीते के बीहर रोकण मुल्क दुश्मनी ना है। पीटीआई वारा होश का कम वन लॉन्ग मार्च खत्म कन तो बीहर गाल
3: अपोजिशन लीडर महमूद खान अचक से ही अपोजिशन टीम के गालियन वाली हुकूमती आज जो मस्बत जवाब देने की हिदायत कर छी। बानी से मुलाकात गालियन की बहाली लाए पेरों शर्त करार बैरिस्टर गोहर है तो असो को भी मुतालबो गैर आइनी न हो। गालियन के भी लॉन्ग मार्च से मशहूर तक वे चैन टुटण ही न घुर्जे, बिहण से ही हल निकर। असद केसर है संगीन खदशन बावजूद हुकूमत से गालियन लाए तैयार आयु, पाकिस्तान खातिर सियासी जमातन के गाल कर
4: रियासत बिल्कुल माँ होती है लेकिन रियासत को बाप का रोल भी करना पड़ता है। बिगड़े बिगड़े बच्चे और ऐसे लोग जो माँ के प्यार से या माँ की इज्जत से खेल रहे हों, जो उसको नुकसान पहुँचा रहे हो माँ को, तो वो फिर बाप का जो एक रोल है वो भी करेंगे। और इस रोल को पहले भी किया है, कायम होती है। जो जब चलती थी तो सारी रियासत जो थी वो एक काम रही होती थी, सारा निज़ाम रुका होता था। काम आज रियासत का फैसला है और उस फैसले के बाद है कोई, ये रियासत का फैसला है। वो TLP हो, वो PTI हो, वो कोई और जमात हो, नो नॉनसेंस।
2: रियासत बिल्कुल माओ है, कदें कदें रियासत के पीए जो किरदार भी अदा करो पवो है। ममलकती वजीर तलाल चौधरी है तो बुधायो किथे है TLP जेका हलंदी हुई तो समूरो निज़ाम ही रुकजी वो हाँ किथे है। रियासत जो फैसलो है तो TLP हो या का बी जमात कंखे बेवकूफ़ी कर न डनी वेंदी। खैबर पख्तूनख्वा बाबत आइनी मामल में मुशावरत जारी है। पंजाब हुकूमत भी सूबे में कलम 144 लागू कर छो, 10 दिन ला जलसन जलूसन इज्तमान से पाबंदी लागू।
5: बगैर मामला हल हों, लेकिन अगर टेररिज्म जो दहशतगर्दी जिस तरीके से इस मुल्क में है उसको कंट्रोल करने के लिए आईनी जो भी तरीकेकार हुआ उसको फिर अख्तियार करना पड़ेगा।
3: दहशतगर्दी के कंट्रोल करने लाए को हलाहे थियण घुर्जे, इमरजेंसी लगाने बिना मसला हल थी सकन था तो थियण घुर्जन। पान सईदाबाद में मीडिया से गालाइंदे वडे वजीर बात अली शाह चयो है तो बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत ए अपोजिशन विच में गालियन की कामयाबी लाए वडी कोशिश कई। हुकूमत ए अपोजिशन विच में गालियों नाकाम छो थियो सभी के खबर है। पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है, गालियन ते कीन रखे थे।
6: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
7: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
8: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
9: सुनते रहो GFM 90.8।